0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में दो और निशानेबाजी में एक स्वर्ण सहित कुल तीन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कम्पाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में दो अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और

AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Linden. कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इनपुट चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार।

अभी आपने सुना मशहूर शायर अमीर सिनाई का ये कलाम, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म थी दीदारे यार। और आज है 30 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बाइबिल के अनुवादक संत जेरोम की याद में मनाए जाने वाले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2017 में, ताकि दुनिया को भाषा के आधार पर जोड़ा जा सके। और इस साल की इसकी थीम है भाषाई विविधता और भाषा का अधिकार, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स। और इसका उपशीर्षक है समझे जाने की शक्ति, यानी द पावर ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। अनुवाद सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म है, जो मूल लेखक की भावना संस्कृति को बिना बदले दूसरी भाषा के पाठकों तक उस कृति को पहुंचाता है। और हमारे देश में तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस वाले वाणी वाले देश में अनुवाद ही वो अदृश्य धागा है, जो संस्कृत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही इसकी विविध संस्कृतियों को आपस में पिरोता है, जोड़ता है। और अनुवाद वो माध्यम भी है जिसने कितनी भारतीय पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। 1785 में जब चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया, तो इमर्सन और थोरो जैसे महान अमरीकी दार्शनिक इसके मुरीद हुए बिना नहीं रह सके। इसी तरह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित पंचतंत्र दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं और 200 से अधिक लिपियों में अनुदित होने वाला बाइबिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक अनुदित ग्रंथ है। और प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान अंग्रेजी अनुवाद के बाद ही नुस्खों के संग्रह में शामिल किया गया था, और उसके बाद ही उन्हें वैश्विक मंचों पर भारत का गोर्की या भारत का थॉमस हार्डी कहा जाने लगा। इसी तरह 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुदित संस्करण पर ही नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि गीतांजलि की मूल भाषा थी बांग्ला। अनुवाद के माध्यम से ही आज हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य सात समंदर पार को ग्लोबल बुक सेल्स की शोभा बढ़ा रहा है। यानी अनुवादक ऐसे मूक शिल्पकार हैं जो बिना किसी शोर के दो अलग अलग देशों के लोगों को करीब लाते हैं। तो आज उन सभी अनुवादकों का आभार जो कि भाषाई सरहदें तोड़कर हमें एक सूत्र में पिरोते हैं।

अगर भाषा नहीं आती है तो कोई भी हमसे कह सकता है यू आर बुद्धू और यू आर हैंडसम, जान लो। खैर, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए और लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास हम सबने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तारीखें, राजा महाराजाओं के नाम रटने में कितनी मुश्किल होती थी। तब कभी कभी हम सोचते थे कि काश कोई टाइम मशीन होती जो पलक झपकते ही किसी भी साल में हम चले जाते और देखते कि उस वक्त हमारे भारत में क्या चल रहा था या किस जगह किसका राज्य था। ये मुमकिन हो चुका है। इसे इतिहास को हकीकत बना दिया है टाइम मशीन की तरह मुंबई के रहने वाले पूर्व इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल कृष्णा शेषाद्री जी ने, जिन्होंने भारतराज्य.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है जो भारतीय इतिहास को अनोखे और डिजिटल तरीके से दर्शाती है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। ये वेबसाइट भारतीय उपमहाद्वीप के 800 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को मैप करती है। इस पर जाकर आप किसी भी विशेष वर्ष का चयन करके ये देख सकते हैं कि उस समय भारत के किस भूभाग पर किस राजवंश का राजा राज करता था या उसका शासन था। चोल, पल्लव, कोटा राजवंश या असम का अहोम साम्राज्य को हम सभी ने पढ़ा ही है, उन्हें उनके राज्य को इस वेबसाइट पर जाकर विजुअल और कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से देखा जा सकता है। यानी इतिहास अब किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। साथ ही यहाँ आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए इसमें एक खास टैब दिया गया है ताकि इतिहास प्रेमी या विशेषज्ञों की राय से ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार करके इसे सटीक बनाया जा सके। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से का इतिहास थोड़ा अलग था तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सुझाव दे सकते हैं। ये वेबसाइट अपनी समृद्ध विरासत को जानने समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अपने स्मार्टफोन को खोलिए और भारतराज्य.com पर चले जाइए और भारत के गौरवशाली इतिहास की सैर करिए।

और अब एक जरूरी बात कर ली जाए। अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाने लगते हैं तो पुरानी पर्चियां, भारी भरकम फाइलें और एक्सरे रिपोर्ट्स का पुलिंदा संभालना सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। कभी रिपोर्ट घर पर छूट जाती है तो कभी डॉक्टर के केबिन में मिलती ही नहीं। लेकिन अब इस झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिलने वाली है। भारत सरकार लेकर आई है आभा कार्ड, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों का आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये स्वास्थ्य की एक तरह से तिजोरी है। जी हाँ, आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की लिखी दवाइयां, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब कुछ इस एक डिजिटल कार्ड में महफूज रहेगा। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, बस ये नंबर दीजिए और डॉक्टर आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा। ना फाइल खोलने का डर और ना ही पेपर संभालने की टेंशन। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको डेटा पूरी तरह से, आपका जो है डेटा वो सुरक्षित रहता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फोन पर कंप्यूटर में जाकर abdm.gov.in वेबसाइट खोलिए। वहां क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए और एक यूजर नेम बनाइए। बस आपका चमचमाता हुआ डिजिटल हेल्थ कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फिर इसे वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात की, अपना और अपने परिवार का आभा कार्ड बनाइए और सेहत के मामले में हो जाइए एकदम टेंशन फ्री।

लव स्टोरी से ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और दोस्तों याद है बचपन का वो आंगन जहाँ सुबह की शुरुआत घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नन्ही गोरैया की चहचहाट से होती थी। लेकिन आज हमारे आसमान से हमारे आंगन में वो छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया कहीं गुम हो गई है। कारण कई हैं, बढ़ती आबादी, आधुनिकता, खेतों में कीटनाशकों का जहर और कट्टे पेड़ जिसने इन बेजवानों का आशियाना छीन लिया है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण की तरह हमारे सामने आती हैं पंजाब के मोगा जिले के निधानवाला गांव से हरप्रीत कौर, जिन्होंने न केवल अपने घर को गौरैया और छोटे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाया बल्कि पूरे गाँव में कई जगह पर पक्षियों के लिए लकड़ी और मिट्टी के रैन बसेरे भी बनवाए। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी प्रकृति और जीवों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब हरप्रीत एक गंभीर बीमारी के बाद बिस्तर पर थीं। तब दीवार पर तिनका जोड़ती एक चिड़िया ने उन्हें जिंदगी जीने का नजरिया दिया और तब छोटे से गत्ते के डिब्बे से चिड़ियों के आशियाने की उन्होंने शुरुआत की। और आज हरप्रीत के घर में 175 से ज्यादा मिट्टी और लकड़ी के कृत्रिम घोंसले लगे हैं जहां रोज 250 से ज्यादा गौरैया चहकती हैं, जिनके लिए वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर साफ फूड और ठंडा पानी रखती हैं और गर्मियों में कंगनी या बासमती चावल और सर्दियों में गेहूं या बाजरा खाने को लिए देती हैं। हरप्रीत कौर इन चिड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और प्यार से उन्हें राजकुमारियां कहती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन परिंदों ने उनके जीवन में बेटी न होने का खालीपन भर दिया है। हरप्रीत कौर का इन परिंदों से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये चिड़ियां बिना किसी डर के उनकी हथेली पर आकर दाना चुगती हैं। इन नन्हे जीवों की सुरक्षा के लिए हरप्रीत कौर हर संभव प्रयास भी करती रहती हैं। गांव के लोगों को उन्होंने पराली के धुएं और कीटनाशकों की रोकथाम के लिए जागरूक किया है। तो हरप्रीत कौर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण

को बचाने के लिए किसी भी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं, बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। और शुरुआत हमारे अपने घर की खिड़की या बालकनी में सकोरे में पानी और मुट्ठी भर दाने से भी हो सकती है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सरगम और आवाजें थी रफी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहिनी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान या फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर जिन्हें हम फेंक देते

कहते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं। राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू। उन बेकार कतरनों को रिसाइकिल करके ये महिलाएं ऐसे खूबसूरत और ब्रांडेड शर्ट, बैग और डिजाइनर कपड़े तैयार करती हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। सूत्रधार सिर्फ एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। राहिनी बंसल की ये पहल उन महिलाओं के बिल्कुल मुफ्त उसमें उनको सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी देती है और ये बहुत ही खूबसूरत कदम है। जानते हैं कि ये जो शुरुआत हुई थी उनकी, वो 6 महिलाओं से हुई थी और

लिए फैशन की बात करें तो रायनी बंसल और सूत्रधार की इन महिलाओं को जरूर याद करिएगा, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद हो, हाथों में हुनर हो, तो बेकार कतरन भी ब्रांडेड पहचान बन जाती है।

काम चोर, इस फिल्म से अभी आपने सुना किशोर और लता मंगेशकर को। और अब बात 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। ये राष्ट्रव्यापी सफाई आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम जनता को सफाई से जोड़ने और कचरा प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकारी काम नहीं बल्कि हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने और इसे एक पारदर्शी जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा पोर्टल जारी किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है, इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर इसे जुड़े ऐप के माध्यम से कचरे वाले संवेदनशील स्थानों की रिपोर्ट की जा सकती है ताकि उन जगहों को पहचान कर उन्हें तुरंत साफ किया जा सके। एक बात और, इस पोर्टल पर योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। सड़क, मैदान, पार्क, पहाड़, समंदर सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं, और इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।

अभी आप फिल्म रॉकी में सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और अब बात कर ली जाए कुछ सेहत की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आयुर्वेद में अचूक औषधि माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिमीकंद की, जिसे कई जगहों पर सूरन या ओल भी कहा जाता है। दिखने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जिमीकंद में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन B6, जो मस्तिष्क के विकास, मूड को ठीक करने और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसी तरह से इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की खून की कमी को रोकने में जो सहायक होता है। आंखों की रोशनी और त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन और

जो है इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। जिमीकंद में बहुत से खनिज और पोटेशियम भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। और साथ ही इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संचार को बेहतर बनाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भी पाया जाता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको बनाने से पहले एक बात ध्यान रखनी होती है कि जिमीकंद काटते समय हाथों और गले में बहुत खुजली होती है, तो जब भी इसे काटें तो ग्लव्स पहनकर काटें और इसके जब गले में ये प्रॉब्लम ना करे, इसलिए इसको बनाने से पहले इसमें हमेशा नींबू, इमली या आमचूर के रस के साथ ही इसे उबालें और पकाएं। और तो जब इतने सारे फायदे हैं इस फल के, तो क्यों ना इसे अपनी डाइट में शामिल किया जाए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक

सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hello, salam, namaste, and a very warm welcome to yours, one of the favorite program, Ek Hi Film Se. मैं हूँ आपकी मित्रा आपकी साथी yours very own दीप्ति और आज मैं लेकर आई हूँ 1978 की वो फिल्म जिसका म्यूजिक न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी बड़े चाव से गुनगुनाया जाता है. आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस ही मैन की जिनकी स्क्रीन पर एंट्री भर से माहौल बदल जाता है. दमदार अंदाज इग्नोर ना कर सके ऐसी पर्सनालिटी और वो खास मुस्कान. अपने दौर के जबरदस्त एक्शन हीरो लेकिन साथ ही कॉमेडी हो या थ्रिल सभी भूमिकाओं में एकदम परफेक्टली फिट हो जाने वाले हर दिल अजीज अभिनेता. जी हाँ, बात हो रही है धर्मेंद्र की, हमारे आपके अपने धर्मपाजी की. लेकिन आज की कहानी में धर्मपाजी के हाथ में ना तो कोई आम हीरो वाला मिशन है और ना ही कोई सीधा सादा सा मुकाबला. इस कहानी में है एक बेशकीमती खजाना और उसे पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर से माहिर चोर. तो आखिर ये कहानी या यूं कहें कि ये खेल है कैसा और हमारे धर्मपाजी इसमें कर क्या रहे हैं, अजी बताएंगे आपको. लेकिन अगर अभी तक आपने आज की फिल्म गेस नहीं की है तो आई एम 100% श्योर कि ये गीत आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दे देगा. तो चलिए सुनते हैं.

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, 1978 की फिल्म शालीमार की। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एस कुमार यानी कि हमारे धर्मपाजी एक छोटे मोटे से चोर है, और हालातों के चलते वो सर जॉन लॉक्सलाई के आइलैंड स्टेट पर एक आयोजित एक सेलिब्रेशन में राजा बहादुर सिंह के बेटे बहादुर सिंह जूनियर बनकर पहुंच जाते हैं। अब वहां कुछ हो ऐसा रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कई सारे चोर मौजूद हैं, और मकसद सबका एक ही है, और वो है एक बेहद कीमती हीरा चुराना। कीमती हीरा यानी शालीमार को चुराना। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक करके लोग, या यूं कहें जो कि बेसिकली चोर हैं, वो मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। कहानी में आगे जाकर पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सर जॉन का अपना एक बहुत बड़ा मकसद है। खैर, अंत में सर जॉन के यहाँ नर्स के रूप में काम करने वाली शीला और कुमार शालीमार को चुराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक खुलने वाले राज में ये भी पता चलता है कि एक्चुअली सर जॉन ने दुनिया भर के कुशल चोरों को मारने के लिए और शालीमार के संभावित प्रतियोगी को खत्म करने के लिए ये सारा खेल रचा था। और फिर एक और धमाकेदार राज होता खुलता है, और उसमें पता चलता है कि कुमार यानी अपने धर्मपाजी असल में एक चोर नहीं बल्कि CBI ऑफिसर है, जो शालीमार को वापस लाने के लिए स्पेशल मिशन पर थे। खैर, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, और इस हैप्पी एंडिंग में कुमार और शीला सदा के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं।

साहिबा को आज सुन रहे थे फिल्म शालीमार के लिए। वैसे शालीमार को खास बनाने वाली जो बात थी ना, वो थी इसकी इंटरनेशनल कास्टिंग। रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन और सिल्विया माइल्स जैसे अमेरिकन एक्टर्स के साथ धर्मेंद्र, जीना दवान और वेरी हैंडसम शम्मी कपूर साहब। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था और इंग्लिश वर्जन का नाम था रीडर्स ऑफ द सेक्रेट स्टोन। साथ ही हम आपको बता दें कि 1977 में जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था, तब उसमें गिना लोलो ब्रिगाडा भी मौजूद थी। हालांकि वे बाद में प्रोजेक्ट से अलग हो गई और उनकी जगह ली सिल्विया माइल्स ने। अच्छा, एक और मजेदार बात, रेक्स हैरिसन साहब की जो हिंदी आवाज थी हिंदी फिल्म में, वो आवाज एक्चुअली कादर खान साहब ने दी थी। जी हाँ, वो आवाज जो आप सुन रहे हैं रेक्स हैरिसन साहब के मुंह से पर्दे पर, उसके पीछे है कादर खान साहब। जबकि इंग्लिश वर्जन में धर्मेंद्र साहब की आवाज को भी डब की गई थी, यानी कि एक ही फिल्म में भाषा भी बदली और आवाजें भी।

और ये थे मोहम्मद रफी साहब फिल्म शालीमार के लिए। कृष्णा शाह द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का आधार जेम्स हैडले चेज के नॉवेल द वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड से जुड़ा था और धर्मेंद्र ने मैक्स कैलेनबर्ग यानी स्टोरी के मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। लेकिन शालीमार की दोस्तों एक और खास बात थी और वो थी उसका म्यूजिक, आर डी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब के गीत। और आपको पता है इसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। एक इंटरव्यू में जीनत अमान साहिबा ने बताया था कि फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में शूट करते समय कई सीन्स को दोनों भाषाओं के लिए कई बार अलग अलग शूट भी करना पड़ता था।

0: बेहद खूबसूरत गीत और आवाज लता दीदी की। दोस्तों, जब बात हो रही है फिल्म शालीमार की, तो भला इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो।
0: अच्छा, इस गीत के बिना दो वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। एक में तो बस 2 मिनट का एक स्टैंजा वाला सॉन्ग है और एक है प्रॉपर पूरा गीत। अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय तो हो रहा है समाप्त, तो क्यों ना हम आपको सुनाएं थोड़ा सा लंबा वाला गीत। और पूरा गीत एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

श्रोताओ, ये थी आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से की फिल्म शालीमार, जो कि अपने समय की भारत की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में गिनी जाती थी। किशोर कुमार साहब की आवाज में सदाबहार गीत के साथ ही मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: इस बीच मौजूद है। समुद्री फौज मुखी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा सिलसिले अति भारतीय समुद्री फौज की संचालन स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने तेजी नाल बदलते मुताबिक कार्रवाई अति प्रतिक्रिया समर्थावां नूं बनाए रखने की जरूरत से जोर दिता। रक्षा स्टाफ मुखी जनरल NS राजा सुब्रमणी ने समुद्री फौज नूं देश की रणनीतिक समर्थावां नूं वधाउण वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति दस्या। उन्होंने टैक्नोलॉजी नूं तेजी नाल अपनाउण, आत्मनिर्भरता प्राप्त करन अते भारत की ऊर्जा सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई समुद्री फौज के यत्ना की शलाघा की थी। फौज मुखी जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा माहौल अते उभर रही सुरक्षा चुनौतियां ते समुद्री फौज के कमांडर नाल अपने विचार सांझे कीते। भाजपा ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस लोगों नूं खेतर भाषा ते जात के आधार से वंडण की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवत्यां ते कीते गए बयान बारे प्रतिक्रिया दिंदे हुए भाजपा बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस हिंदुआं नूं दक्षण ते उत्तर विच वंडण की कोशिश कर रही है। अज नवी दिल्ली विच पार्टी सदर मुकाम विखे एक प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं पार्टी बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस देवत्यां नूं भी वंडण की हद तक चली गई है।
1: अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं। मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर।
0: सरकार ने मुसाफिर वाहन लिए नवे कारपोरेट औसत ईंधन इकोनॉमी CAFE नियमों नूं नोटिफाई कीता है। यह मियार एक ऑटोमोबाइल निर्माता वालों बनाए सारे यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और कुशलता नूं मापता है। यह नवे नियम मौजूदा कारपोरेट औसत ईंधन इकोनॉमी नियमों की थां लेंगे। नवे नियम अगले साल 1 अप्रैल तो लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। यह भारत में बिक्री लिए बनाए या दरामद किए गए नवे यात्री वाहनों से लागू होंगे। पंजाब पुलिस ने कल तो सरहदी जिले अमृतसर विच दो वख-वख कारवाइयां विच एक जोड़े समेत 8 व्यक्तियों नूं आधुनिक असॉल्ट राइफलां, पिस्तौल, जिंदा कारतूस अते हिरन समेत गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी हथियारा ते नशीले पदार्थों की सप्लाई दे नेटवर्क का खात्मा करदे अमृतसर देहाती पुलिस ने कल एक पति पत्नी अते भरा समेत 3 व्यक्तियों ते एक परिवार नूं एक AK-47 अते AK-56 असॉल्ट राइफलां अते कारतूसां अते 10 किलोग्राम हीरोइन समेत गिरफ्तार किया है। जदों की अज पुलिस ने 5 मुलजमान 13 पिस्तौल, 22 जिंदा कारतूस अते 3 किलोग्राम तो वध हिरन समेत गिरफ्तार किया है। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते वेस्टइंडीज विचकार 3 एक रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी दे दूजे मैच विच भारत ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करन दा फैसला किया है। आखिर च खास खबरां। भारत ने जापान एशियाई खेडा विच तीरअंदाजी विच 3 अते निशानेबाजी विच 1 सोने दे तमगे समेत सोने दे कुल 4 तमगे जीते ने। व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अते अमरीका विचकार आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे ने। गृहमंत्री अमित शाह पंजाब ते जलंधर विच नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दी समाप्ति मौके शामिल होण लई इत्थे पहुंच गए ने। रैली नूं करनगे संबोधन। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कातर व्यापार संघ नूं भारत विच व्यापार ते निवेश भाईवाली दी मौकियां दी सरगर्मी नाल घोख करन दी अपील कीती है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुताल्लिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। 200 से ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। भारत ने अब तक सोने के 10 तमगों समेत 59 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात के अपने प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के सुंदरबांस में ख़वातीन के हाथों बनाए गए एक हिस्से का तस्करा किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगलाती इलाका और यूनेस्को का आलमी विरासत का मकाम है। वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, हिरन और कई परिंदे, नीज दीगर नबातात वगैरह पाई जाती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने हालिया प्रोग्राम में सुंदरबन के झारखाली इलाके में खवातीन की जानिब से मैनग्रोव की शजरकारी का तस्करा किया था। इनमें से कई खवातीन के शौहर शेरों के हमले में मारे गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये खवातीन न सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए फितरत को महफूज रखने में अहम रोल अदा कर रही हैं, बल्कि इन्हें मैनग्रोव की शजरकारी से आमदनी भी हो रही है। मैनग्रोव के जंगलात से शहद और दीगर वसाइल हासिल होते हैं, जिनके जरिए इन खवातीन को रोजी रोटी मिल रही है।
2: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में झारखाली की महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है।
1: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का तस्करा कर रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु समंदर के ऊपर तामीर किया गया सबसे तवील पुल है। वज़ीर आज़म ने जनवरी 2024 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी ने दिसंबर 2016 में इसका संग बुनियाद रखा था। अटल सेतु 17,840 करोड़ से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया था और ये तकरीबन 21.8 किलोमीटर तवील है और इसमें 6 लेन हैं। पुल का तकरीबन 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर के ऊपर है जबकि लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: नेपाल की गंडक तास के इलाके और बिहार में मुसलसल बारिश के सबब दरियाए गंडक में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिससे शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया के किनारे टूट गए हैं और 200 से ज्यादा गांव मुतासिर हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम भारतीय टीम ने मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को 237 के मुकाबले 238 पॉइंट से हराया। इस तरह भारत तमगे जीतने की फहरिस्त में सातवें मकाम पर आ गया है। भारत ने अब तक मजमू तौर पर 59 तमगे जीते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने मुसाफिर मोटरगाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सिन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against the West Indies at Guwahati. Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027.

0: तक स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सीएएफई मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से बिना किसी

0: यात्रा मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
1: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
2: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिन्द्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंडावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है गेस्ट सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
3: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
5: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता है, खासकर पीक आवर्स में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
3: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशिया

0: खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 आकाशवाणी करगिलिन कसता प्रोग्राम मजात स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता

0: प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी,
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी,
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी,
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी,
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी,
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
1: जी,
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओ, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी,
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी,
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए

0: इस जरूर जाने।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।

0: हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
1: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
0: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
1: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
0: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
1: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
2: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
3: निर्मल सर, आप यहाँ?
2: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
3: सर, ये तो हमारा काम है।
2: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
3: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
2: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
0: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
2: एक मिनट मानसिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
1: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था

0: पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
1: सामरिक समुदाय में यह माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रण कौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आए।
3: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है। निशाना लगाता हूँ, अब बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
1: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
0: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, अब भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
1: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
0: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
1: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए

0: शहीद हो गई।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामिन, आपको बताते हैं कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब रेवती शरण शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा ना दोहराने काबिल कहानी। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

और शामिल लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, दाग फिल्म का नगमा, नगमानिकार साहिल दुधानवी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज किशोर कुमार की है।

और सामिन जी, जब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में कभी कभी फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिर, मौसीकार खयाम।

सामीन इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है जनाब रेवती सरन शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा ना दोहराने काबिल कहानी।

0: भाई वाह, आज तो तुम सचमुच जया देवी लग रही हो। कौन सी लड़ाई फतेह करने का इरादा है?
1: चुप ही रहिए।
2: क्या हुआ?
1: बच्चे घर में हैं। ये उम्र होने को आई पर आपका लड़कपन अभी तक गया नहीं।
0: अरे क्या उम्र है मेरी, वाह, अभी तो लोग मुझे सुरेश चंद को जवान पट्टा ही समझते हैं। अभी कल ही वो जो मोहल्ले में नए साहब आए ना, अरे वही मिस्टर रॉय है, कह रहे थे कि मैंने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है। जब मैंने कहा कि मुझे तो रिटायर हुए 2 साल हो चुके हैं तो हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। समझे? क्या समझे?
1: जी यही कि आप आज बड़े मूड में हैं। क्या बात है, कोई लॉटरी निकल आई है क्या?
0: लॉटरी? अरे लॉटरियां तो मेरी 3-3 निकल चुकी हैं और तुम्हें मालूम तक नहीं। पूछो कब निकली।
1: सच? कब निकली है? हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं।
0: एक को तो हम बैंडबाजी से लेकर आए थे, दूल्हावन का। वो पहली लॉटरी थी। फिर आई दूसरी और तीसरी, नाम है रमेश और रेखा। भला मुझे अब किस लॉटरी की जरूरत है, मगर पहली लॉटरी ने ये दोनों जरा देर में दिलवाई। कुछ पहले दिला दी होती तो जिंदगी प्लान से चलती।
1: हाँ, इस थैले में क्या लाए हैं?
0: ये तुम्हारे रमेश और रेखा के लिए।
3: क्या लाए पिताजी?
4: पिताजी ये लीजिए पानी।
0: लाओ।
4: चाय पियेंगे या कहीं से पी आए?
0: अरे कौन पिलाता है हमें चाय सिवाय हमारी बिटिया के। रमेश पढ़ाई का क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक?
3: हाँ पिताजी, ये फर्स्ट ईयर है, 2 साल बाद बीए हो जाऊंगा बस।
0: वो तो होगा ही, सब भगवान करेंगे। और रेखा तुम, तुम्हारी तैयारी कैसी है?
4: ठीक है पिताजी, पास तो हो ही जाऊंगी।
3: हाँ मिस चट्टोपाध्याय की फेवरेट जो हो, अरे डट कर मक्खन लगाती हो।
4: देखिए पिताजी, भैया को रोकिए, मैं क्यों किसी के मक्खन लगाती? अपनी तो कहते नहीं, रात दिन डॉक्टर बत्रा कहते हुए मुंह सूखता है।
3: अरे वो है भी कितने काबिल, देश विदेश में उनका डंका बजता है।
4: तो चट्टोपाध्याय ही क्या कम है, अमेरिका में पढ़ी है, मालूम भी है।
0: अच्छा भाई छोड़ो भी, अब क्यों झगड़ा करते हो खामखा? देखूं शायद बाबू रामेश्वर प्रसाद आ गए।
5: अम्मा मेथी के परांठों का सवेरे हम सब का नाश्ता पक्का?
3: मक्खन के साथ?
4: वही जो तुम डॉक्टर बच्चा के लगाते हो, वही मक्खन ना?
3: अच्छा तो रेखा की बच्ची, तू बड़ा सच्चा हो गई है।
0: रेखा की माँ, रेखा, अरे भाई ये अंधेरा क्यों कर रखा है, बिजली फिर फेल है।
1: जी
0: कमाल है, मैंने जाने कब शिकायत कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो अभी ठीक कर देंगे, कोई आया था?
1: जी हाँ एक साहब आए थे, कहते थे हमारे पुरखे बिना बिजली के वेद लिख गए तो हम उसके बिना क्यों नहीं रह सकते।
0: नाराज क्यों होती हो बाबा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मिट्टी का तेल तो ले आई होंगी तुम?
1: जी हाँ पूरा कनस्तर लाई हूँ।
0: नाराज क्यों होती हो बाबा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। चलो अब पड़ोसन से एक बोतल तेल मांग लाओ।
1: और खाना उसका क्या होगा?
0: वो रूखा ही बना दो।
1: हाय री तकदीर, आज तुम्हें और बच्चों को मैं रूखा खाना बना कर दूंगी, इससे पहले मैं मर क्यों ना गई।
0: क्या बात करती हो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अभी रमेश को नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
1: यही तो सुनती रही हूँ, पर वो सेकंड क्लास में जो पास हुआ है, सुनो वो कह रहा था कोई और कोर्स है कॉलेज में कुछ महीने का।
0: अच्छा,
1: उसे कर लेने पर नौकरी मिलनी आसान होगी। पूछ देखना जरा। हम तो जैसे तैसे काम चला ही लेंगे, उसका काम बनना ही चाहिए। लड़के का दिल छोटा हो रहा है, सेहत भी अच्छी नहीं रही।
5: भैया आ गए।
1: देखो उससे कुछ मत कहना।
0: तुम मुझे बेवकूफ समझती हो जया?
3: यहाँ अंधेरा क्यों है, बिजली क्यों नहीं जलाई माँ?
5: रेखा चाय तो ले आ बेटी रमेश के लिए, आज फिर बिजली गायब है। तुम दिन भर कहाँ कहाँ गए?
3: दफ्तरों और कंपनियों में भटकता रहा, और करना ही क्या है, बेरोजगार आदमी का यही काम है। इसमें वक्त भी कट जाता है और घर वालों की तरह अपनी उम्मीद भी दिन भर मर मर कर जिंदा होती रहती है, पर लगता है वो शायद रोज कमजोर होते होते अब मर ही जाएगी।
0: ऐसे नाउम्मीद क्यों होते हो रमेश, सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना तुम्हें नौकरी

0: मिल ही जाएगी।
1: मिल जाएगी अगर आपके हाथ में नौकरी हो तो, नहीं तो सच बात तो यह है कि नौकरी उनको मिलती है जो या तो बराबर फर्स्ट रहे हो या उनकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल हो, और अपने पास दोनों ही नहीं, फिर नौकरी कहां।
2: लो भैया चाय पी लो।
1: रेखा ये चिट्ठी बाहर लेटर बॉक्स में पड़ी थी तेरी। पिताजी हमारे कॉलेज में 3 महीने का कोर्स है, ऑफिस रूटीन सिखाने के साथ ही टाइपिंग भी सिखाते हैं।
0: अच्छा
1: कहो तो मैं ज्वाइन कर लूं।
0: फीस क्या है
2: भैया? तुम ज्वाइन कर लो, अब फीस की परवाह मत करो।
1: क्यों, चिट्ठी किसकी है?
2: ये स्काई हाई स्टोर की है, उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर की है।
1: तुमने अप्लाई कब किया?
2: पिताजी माँ आप नाराज मत होना, मैंने अखबार में से पढ़कर अर्जी भेज दी थी, फिर बुलाने पर इंटरव्यू को भी गई थी। आपसे यूं नहीं बताया कि भैया सोचा कि नौकरी मिलने पर ही बता दूं।
3: नौकरी क्या है?
2: सेल्स गर्ल की, काउंटर पर रहना होगा, सामान की देखभाल और बिक्री, बस इतना सा ही तो काम है। उम्मा मैं कितनी लकी हूँ।
0: फिर आगे की पढ़ाई का क्या होगा?
2: नहीं पिताजी आगे पढ़कर क्या करना है, इस वक्त तो नौकरी चाहिए। इस जमाने में पढ़े वो जिनके पास रुपया हो, हमें तो खाली जिंदा रहने को, दो वक्त की रोटी खाने को नौकरी करनी ही चाहिए।
1: रेखा शाबाश, तुम मुझसे बाजी मार ले गई। अरे हाँ घर का लड़का तेरा भाई अगर नहीं कमा सकता तो तू तो कमा ही सकती है।
2: भैया कैसी बातें करते हो, उदास क्यों होते हो? तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिलेगी, खूब बड़ी सी शानदार, फिर मैं ठाट से घर में बैठ के मौज करूंगी। मैं तब थोड़े ही काम करूंगी, पर तब तक तुम ये नया कोर्स ज्वाइन कर लो कल ही से प्लीज।
1: हाँ कर लूंगा, करूंगा ही, और चारा ही क्या है। अब तक पिताजी की पेंशन पर ऐश किया है, अब छोटी बहन की कमाई पर पढ़ाई करूंगा। माँ खाना तो बन ही गया होगा, बस अब तो इस घर के सबसे खुशकिस्मत आदमी के पेट भरने का इंतजाम करो।
2: अगर भैया को इतना बुरा लगा है तो मैं नौकरी ना करूं, क्या राय है?
3: मैं क्या कहूं बेटी, बेचारा रमेश।
0: नहीं तुम नौकरी को मना मत करना, रमेश के करियर में मदद मिलेगी, घर पर भी कुछ बोझ कम होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे।
3: तनख्वाह क्या मिलेगी तुझे रेखा?
2: 150 रुपये महीना माँ।
3: ठीक है, इस परेशानी के जमाने में ये रुपया बड़े काम आएगा। चलो रमेश को देखो।
1: डॉक्टर साहब क्या हाल है पिताजी का?
4: वो इंटेंसिव केयर में है। ठीक है,
3: हम उन्हें देख सकते हैं?
4: अभी नहीं, आप ये बताइए काबू नहीं अटैक पड़ा था?
3: डॉक्टर साहब वो कल दिन भर ऐसे ही निढाल रहे, मैं तो समझी यूं ही फिक्र कर रहे हैं घर के, कहा भी तो हंस दिए, बोले अरे तुम फिक्र मत करो, ये तो शरीर है हमेशा एक सा थोड़ा ही रहता है।
4: नींद कैसी रही?
3: ठीक रही डॉक्टर साहब, वैसे मुझे ज्यादा पता भी नहीं, सो सवेरे नाश्ते के बाद कोई 11 बजे ये बोले मुझसे, एक प्यारा चाय दे सकती हो? बस डॉक्टर साहब चाय लेकर जो मैं पहुंची तो देखा ये पलंग पर बैठे, सारा बदन पसीने से तर है, सीना कसकर दबा रखा है, मैं घबरा गई, ये बोले छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर वर्मा को बुलाओ। उसके बाद का हाल तो आप जानते ही हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा ने एक इंजेक्शन दिया और अपनी ही गाड़ी में नहीं ले आए, बेचारे बड़े भले आदमी हैं, नहीं तो आजकल कौन किसी का होता है।
4: ठीक है, अगर आप लोग कल ले आते तो।
1: लेकिन डॉक्टर साहब हमें क्या पता था, क्या उन्हें वाकई हार्ट अटैक है?
3: हे राम,
4: घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
3: रेखा तू इस वक्त कैसे?
2: माँ पिताजी का क्या हाल है?
3: तू काम से इस वक्त कैसे आ गई?
2: माँ मेरा काम नौकरी। माँ जब भैया का फोन कंपनी में आया, पहले तो मैनेजर ने बुलाकर डांटते हुए कहा कि दफ्तर के फोन कंपनी के स्टाफ के लिए नहीं है, बड़ी बदतमीजी से बोला था वो, फिर मैंने फोन सुनकर पिताजी की बीमारी की बात कहकर छुट्टी चाही तो फिर पकने लगा।
1: क्या कहा उसने?
2: कहने लगा कि ऐसे बहाने उसने बहुत सुने हैं, लड़के लड़कियां ऐसी कहानियां बनाकर मौज करने निकल जाते हैं।
1: सुवर कहीं का, मैंने कहा था मैं तेरा भाई हूं, फिर भी उसने

0: मेरी एक बात ना सुनी, यहां तक कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तो पिताजी की बीमारी, फिर उसकी जली कटी बातें, मैं रोने लगी।
1: मेरी बच्ची,
0: फिर भी जब उसने ये सब गलत ही समझा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी और सीधी यहां चली आई।
2: ठीक किया, मैं अभी उस शरीर को जाकर ठीक करता हूँ। वो समझता क्या?
1: रमेश,
2: क्या है माँ?
1: बेटा, हम किसी से लड़ने की हालत में नहीं है, ये बीमार पड़े हैं और हम गरीब हैं।
2: तुम ठीक कहती हो माँ, तुम ठीक कहती हो।

0: जय हो भगवान तेरी।
1: माँ पूजा कर चुकी?
0: हाँ बेटा आ गया तू।
1: मुझे जाना ही कौन से पहाड़ खोदने था माँ। लो ये रुपया, तुम्हारे हार और अंगूठी के 550 रुपए मिले, ज्यादा नहीं मिल सके। पिताजी के लिए फल और दवा भी ले आया हूँ।
0: तुझे बहुत फिरना पड़ा होगा, चल चाय पी ले।
1: हाँ माँ फिरना तो पड़ा, आखिर जवान हट्टा कट्टा बेटा अपनी माँ का जेवर बेचने निकला था ना, सो मेहनत तो पड़ती ही, लेकिन क्या परवाह है, बहन नौकरी करती है, मैं माँ के 2-4 गहने बेच ही सकता हूँ, बीमार बाप का इलाज हो ही जाएगा, मुझे क्या फिक्र है। माँ रेखा नहीं आई?
0: अभी कहाँ, 6:30 बजे तो दुकानें बंद होती हैं, अभी आती होगी। तू फकीरचंद की दुकान देखाया, रेखा क्या काम करती है वहाँ?
1: दुकान तो ठीक ही है, रेखा दिन भर मशीन चलाती है, कपड़े सीती है, दिन भर लगातार। माँ तुम्हारा गला सूना सूना हो गया, अच्छा नहीं लगता।
0: बेटा तू जी छोटा मत कर, सब भगवान ठीक कर देंगे।
1: भगवान? माँ ये भगवान जी है ना, ये कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सुनते, तुझे पता नहीं है, ये अब उनकी ही सुनते हैं जो इन्हें दूध दही में नहला सकते हैं, सोने चांदी के थाली में भोग लगवा सकते हैं, रेशम और मखमल के कपड़े पहना सकते हैं, अब भगवान बदल गए हैं माँ।
0: तू तो नास्तिक हो गया है।
1: तुम जैसे आस्तिकों ने क्या पाया है भला, बताओ तो। इसलिए मेरी राय है अब भगवान को पेंशन दो। तुमने अस्पताल में देखा था ना माँ, पिताजी को हार्ट अटैक था, उन्हें इंटेंसिव केयर से निकालकर कहाँ रखा था, जनरल वार्ड में, डॉक्टर कई दफा आता था माँ, 2 बार राउंड के वक्त दवा हम ला कर देते थे, और दूसरी तरफ ये प्राइवेट वार्ड्स, नर्सिंग होम जिनमें पड़े थे रुपए वाले, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को गैस का दर्द था, कोई सिर्फ आराम कर नहीं आ पड़ा था, उनके लिए डॉक्टर कई बार जाते थे, देखा था ना माँ, और नर्सें वहां कितनी थी भला, गिन भी सकती थी तुम।
0: सब तकदीर की बात है बेटा।
1: मतलब ये कि हम सब देश के करोड़ों आदमियों की तकदीर खराब है, सिर्फ कुछ की ही अच्छी है, ये तुम्हारे भगवान का खूब इंसाफ है।
0: बेटा तू जी छोटा मत कर, सब भगवान ठीक कर देंगे।
2: माँ पिताजी कैसे हैं?
1: रेखा
2: भैया
0: ठीक है, तुझे पूछ रहे थे। रमेश उनके सामने ये सब बकवास मत करना।
1: माँ मैं ऐसे चुप रहूंगा जैसे मेरी तकदीर चुप है। रेखा दिन कैसा कटा?
2: ठीक ही रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला भैया कि कब शाम हो गई।
1: सो तो हुआ ही होगा, मशीन की लगातार खट खट खट खट मन को ठस कर देती है।
3: यार कहाँ चले, मीटिंग में तो अभी देर है।
1: मीटिंग? कैसी मीटिंग?
3: क्यों नोटिस बोर्ड नहीं देखा था?
1: कौन देखता है यार नोटिस बोर्ड, अपन तो अखबार के बस वांटेड कॉलम ही देखते हैं।
3: मैंने तो भाई उन्हें भी देखना छोड़ दिया यार। पड़ोस की यूनिवर्सिटी में तालबिन हड़ताल कर रहे हैं चार्जेस बढ़ाए जाने के खिलाफ,
1: तो
3: हम भी इस मीटिंग में तय करेंगे कि उनका साथ देने के लिए क्या करना चाहिए।
1: मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, हम सबको अपनी अपनी जान दे देनी चाहिए।
3: उससे क्या होगा, किसी के कान पर जू भी ना रेंगेगी।
1: कम से कम घर वालों का हम पर किया जा रहा बेकार का खर्च तो बचेगा।
3: अच्छा यार चल तब तक एक प्याला चाय तो पी ले, तू अपना खर्च बचा, चाय के पैसे मैं दे दूँ।
1: अरे छोड़ भी यार, यही लाइन पर बैठते।
3: अरे बेवकूफ, वहां हो सकता है हमारा दोनों का या एक का करियर ही बन जाए।

0: कैसे? वहां कौन से एम्प्लॉयर आने वाले हैं यार?
1: अरे वो नहीं तो उनकी बेटियां ही सही, कौन जाने कोई हमें भी पसंद कर ले, बस फिर बेड़ा पार हो जाएगा। सो इस चाय को फजूल खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो, जिसका नफा भी मिल सकता है।
0: इसीलिए तुम लड़कियों के पीछे फिरा करते हो, अब समझा। लेकिन दोस्त, कभी कभी नफा चप्पलों की सूरत में भी मिल जाएगा।

0: में 10 पैसे फीका।
1: साहब मैनेजर से पूछ लीजिए, कमेटी ने यही रेट तय किया है।
0: मैनेजर साहब, ये चाय के दाम एकदम इतने कैसे बढ़ा दिए?
2: कमेटी का फैसला यही है।
0: कमेटी कमेटी, जिधर देखो कोई कमेटी है या काउंसिल है, गया दुनिया में कमेटी राज हो रहा है।
3: दोस्त, इस तरकीब में एक आराम है, तुम किसी से झगड़ा बहस नहीं कर सकते। कमेटी जो ठहरी, किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी है जिससे बहस करोगे।
4: साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। आप ये भी जानते हैं बेरोजगारी का क्या हाल, फीस कहां से कहां तक पहुंच गई है। उस पर गजब ये कि हमारे पेरेंट्स की आमदनियां लगभग जहां की तहां है, और यही वजह है कि हमारी पड़ोसी यूनिवर्सिटी के हमारे साथियों ने तंग आकर अपनी नाराजगी जाहिर करने का फैसला किया है। आखिर कब तक, कब तक वो मां बाप से मांगते रहेंगे और किस उम्मीद पर? यही ना कि वो डिग्री लेकर सड़कों पर बेरोजगार घूमे, घर वालों पर भी बोझ बने रहे, ना उम्मीद होकर या तो कहीं जाने दे दे या फिर ऐसे काम करें जो कानून के खिलाफ हो। तब हार कर उन्होंने अपने यहां हड़ताल, जुलूस और शहर बंद का ऐलान किया है, और ये सब इस उम्मीद से किया कि शायद तब उनकी कोई सुने, कोई समझे। उन्होंने हमसे भी कहा है कि हम भी उनका साथ दें। उनका प्रोग्राम अगली 7 तारीख का है, इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया है। अब जैसा फैसला आप करें वही सबको मंजूर होगा, तो आपको भी यही प्रोग्राम मंजूर है। मैं आपको बधाई देता हूं और गुड विशेस कि हम इसमें कामयाब होंगे। लेकिन बस एक बात याद रखिए, हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, वो छोड़ने पर और जरा सी गलती करने पर हम फेल हो जाएंगे, हमारी तहरीक कुचल दी जाएगी।

0: रेखा, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं।
1: सर, आपने मुझे बुलाया था।
2: ये आउटपुट शीट तुम्हारी है?
1: जी।
2: इसमें लिखा है कि तुमने पिछले हफ्ते में 48 ड्रेसेस तैयार की थी।
1: जी।
2: लेकिन रिसीट डिपार्टमेंट के मुताबिक तुम्हारे पास से कुल 46 ही उनके पास पहुंची।
1: जी, कोई गलती हो।
2: मिस रेखा, मेरे यहां गलती करने वाले का काम नहीं है।
1: सर, शायद रिसीट वाले ने।
2: ये नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक किया। तुम्हें और कुछ कहना है?
1: इस दफा माफ कर दी सर, मैं अगले हफ्ते 50 ड्रेसेस बना दूं।
2: ऐसा बेकायदा काम मेरा नहीं चलता। आज हफ्ता खत्म है, इस हफ्ते का काम इसी हफ्ते में होना चाहिए, नहीं तो तुम अपना हिसाब करके जा सकती हो।
1: सर, ऐसा न कीजिए सर, मेरे फादर बहुत बीमार है सर।
2: मैं जानता हूँ और इसीलिए नहीं चाहता कि मैं तुम्हें निकालूं। मैं भी हमदर्दी करना जानता हूँ। तुम्हारा रोजगार लेकर मुझे दुख होगा, तुम्हें भी परेशानी होगी, लेकिन हिसाब हिसाब है।
1: जी।
2: तुम ऐसा कर सकती हो कि कल आकर के ये अपनी दोनों बाकी की ड्रेसेस तैयार कर दो।
1: कल? पर कल तो शहर बंद है सर।
2: तो
1: दुकान बंद नहीं रहेगी?
2: हाँ रहेगी, और ये नुकसान, ये बेकार की हुल्लड़बाजी की ज्यादती भी सहनी पड़ेगी।
1: तो सर,
2: तुम पीछे के दरवाजे से आ जाना, वो खुला होगा।
1: लेकिन सर, मैं आऊंगी कैसे सर? कल तो शायद बस वगैरह भी नहीं चलेगी।
2: वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं कि खतरा मोल लेकर भी दुकान का पिछला दरवाजा खुला रखूं और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दूं। और अगर तुम नहीं आ सकती तो फिर परसों से आने की जरूरत नहीं।
1: आऊंगी सर, जरूर आऊंगी, जैसे भी हो सकाऊंगी। यस सर।
2: ठीक है, जाओ, कल सवेरे आ जाना। बस मैं इतना ही कर सकता हूं, और वो भी तुम्हारे लिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।

0: अरे देखा तुम आ गई।
1: शाबाश शाबाश
2: सर, मैं पैदल आ रही हूँ घर से सर।
0: अरे राम राम, फिर तो थक गई होगी। बैठो बैठो, सुस्ता लो। क्या पियोगी?
2: जी पानी ही ठीक रहेगा, पी लूंगी। अभी तो वो ड्रेसेस निपटाकर फिर घर भी जाना है सर।
0: अरे तुम बैठो तो थोड़ा आराम कर लो। बात यह देखा कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, सुंदर भी हो, तो मैं सोचता हूँ क्यों तुम्हें परेशान करूं। अरे दो एक ड्रेसेस की तो गलती हो गई है, क्या हुआ? तुमने कोई जानकर थोड़ी की होगी, और फिर तुमसे तो मुझे खास हमदर्दी है। तुम्हारे पिताजी बीमार है ना? अरे हाँ, कैसी तबीयत है उनकी?
2: अब तो ठीक है।
0: अरे तुम दूर क्यों हट रही हो रेखा? मेरे पास बैठो। अपना तो कोई नहीं, और अगर तुम मेरी होती तो फिर तुम कार में बैठती यूं शांत।
2: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए।
0: अरे अरे अरे, मुझे तो तुमसे हमदर्दी है रेखा। रेखा सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिताजी का बेहतरीन इलाज हो सकता है। तुम सब, मेरा मतलब है सारा खानदान, बड़ी शान से रह सकते हो। बस जरा तुम्हें समझदार होने की जरूरत है। मेरा मतलब है मुझे समझने की जरूरत है।
2: आप मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, सोचिए तो।
0: इतनी उम्र है तभी तो मैं तुम्हें सारे आराम दूंगा। तुम्हारे भाई का अपना बिजनेस होगा और तुम मेरी
2: रख। मुझे पता नहीं था, आप अपने हाथ दूर रखिए। नहीं नहीं नहीं तो मैं शोर मचा
0: तो क्या होगा? अरे आज बाजार बंद है, कौन सुनेगा? और अगर किसी ने सुन भी लिया तो यही कहेगा कि तू यहाँ आई क्यों थी। फिर आज इस शोर में तेरी चीख डूब जाएगी, इसीलिए तो मैंने ये खेल रखा था। रेखा अगर तू राजी तरी मानी तो फिर मुझे
3: रेखा क्या हुआ? तू ऐसे घबराई क्यों है? तेरे कपड़े क्यों फटे?
2: भैया वो मेरा बॉस पति थे ना, उसने
3: तू आ रेखा,
4: रमेश की बहन है।
5: वो तो हो ही
6: जाएगा।
7: तो जनाब ये है जो मैंने किया और किस वजह से किया। अब आप क्या सजा दे सकते हैं फकीर चंद को, उनको जिन्होंने हमें, रेखा को, सबको इतना बेबस बना दिया है, उन मुनाफाखोरों को, उन चोरों को, उस समाज को जो रेखा की इज्जत नहीं बचा सकता, जो मुझे रोटी रोजी नहीं दे सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन आप मेरी जगह होते तो यही करते जो मैंने किया। जज साहब मुझे सजा दीजिए, लेकिन आपसे मेरी इल्तजा है कि ऐसे हालात पैदा कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि मेरी ये कहानी दोहराई न जाए, मेरी न दोहराने काबिल कहानी। ये समझ लीजिए कि आज जो हर इज्जतदार नौजवान चराग जला रहा है वो बुझने वाला नहीं, मेरे या किसी के जेल जाने से भी नहीं, वो जलता ही रहेगा। हाँ चराग जलता ही रहेगा, क्योंकि उसे जलना ही है, राह दिखानी ही है।

और सामने लीजिए, अब सुनिए कैलिन जॉन की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे कलमबंद किया है सईद कादरी ने, मौसीकार हैं प्रीतम।

प्रोग्राम की अगली पेशकश आशिकी टू, फिल्म का नगमा पलक मुच्छल और अरिजीत की आवाजों में, नगमा निगार इरशाद कामिल, मौसीकार जीत गंगोली।

बेवफा सनम फिल्म का नाम आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है पत्थर के सनम।

समय पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन अब से लेकर रात 10 बजे तक अब हमारी नशरियात मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव स्टॉचिंग नाग ज्ञानी किलोहर्ट्स, मीडियम वेव त्रुज्ञा नंगीशी नजबी किलोहर्ट्स, एफएम रियाई शहर चेक मेगाहर्ट्ज, दोना मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर का गचस आकाशवाणी करगिल का जरिन दिरिंग जकबो बोधु सप्टेम्बर हिल से सुमचु दिरिंग प्रचुपत भी प्रोग्राम नंगेबो गचंग यंग सरसी की अंति खदमे लेपसित मची चोखना जुना सलाम पो कबूल बाजत कसता दिरिंग प्रोग्राम ला गुजुक बेद स्पेशल प्रोग्राम सेवा संकल्प नंगेबो निन मजात।

0: ngatanga di sabro domek ne mo ngatanga zan po ngatis lencha food po ngatis sakati ka tapcha ngatanga reuse chacha adu chola ko sustainable food po zerendu do na healthy life jab insaan healthy hoga to obviously ngati environment healthy chhe do na ko adya log chik ni sidhi zerdu chi ga ga chi sunya no ngatis tabdil ko mar ko shedu change ko mar chalu zer chi chi ko zerdu ju ya change in demand हमेशा गतांगा ची डिमांड ची कदो जान ना कदो येरी अध्यानो डिमांड पे चेंज बचा चिया दरबाना दे प्रोडक्ट पे एरेज इस्तेमाल बचा खोचा ताकि खुए यूज पो यंग दोबारा यूज शो खुए इन्वायरमेंट ही असल में छो खो छा ना कदो गतांगा चुआ यानो या दरें गतांगा सबसे फेमस वर्ड ची मीन्स जो है सर्कुलर इकोनॉमी जरे कि आदो दोबारा जोक से गति चौक जरूर दो गति डिमांड पे आयो जा दिया चौक से चौक गति देखे चेंज इन सप्लाई अगर बना खची की डिमांड पे तंगाते इसको सप्लाई बना का तो अदे आगाते चेंज कर जा मिसाल की अरे चीज ताना का तो गिलास पे दीफ या प्रोटेक्शन पे पैकेट पे मना छो पैकेट अदे पैकेट पे यार अगर बना का तो प्लास्टिक ना बहुत सारी चीजें जिससे मना चीज पो सुन से कचरा मना खिमेक दी दो अदो जति चीज ना गति रिमांड पे बचा दो ना गति जो चेंज इन पॉलिसीज गवर्नमेंट ही गचुक पॉलिसी कति हो ना कतो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जा ताकि देखा गता इन्वायरमेंट का असर में बचा दियो गति मिशन लाइफ यानो तफसील दी नहीं हो दिया बस
1: ओलम से वेरेज जिसकी मतलब कंजप्शन एक गते सा सप्लाई इंक्रीज बसे या जिसकी मतलब सप्लाई ना डिमांड पे कंगते असर देन कंट्रोल बसेगा था दी माइंडफुल कंसेप्शन जिंदगी चॉइस पो जैसे कि बिजली बचत बेत छू बचत बेत गंदगी कम फिंग त्यूस माहौलिया गचुक असर से सचिन जो मिल लाते सुन से हरका दिन जो स्वच्छ भारत अभियान लामा दूर जाना प्लास्टिक चिन्ह तो डस्टबिन असर सचिनती माहौल हिफाजती कर
0: कसे जो दू सबसे इम्पोर्टेंट जो है दी थीम पोखरा दिया दरे आता दी मिशन लाइफ पे अनुक पहला हमारे गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी बनता था ये सब हुआ ना जरा पहला जिदी का कि प्रो प्लैनेट्स फॉर पीपल जरे गति लोग ही कम्युनिटी मोबिलाइज बचा इंडिविजुअल मोबिलाइज बचा ताकि रेन और रेरे ना गति कम्युनिटी गंगमा दियंग तो इन्वॉल्व छा आखिरकार चीज पो गंगमा इंसान बचिन गता मिंदा रेरेज बचिन गंगमा महस हाई लेवल का चेंज छा जरूरी में कि गाते रेन रेटे दरे एरी दिए हिसाब पे कदू खोए जैसे कि यार गोखरी का गाता एनर्जी जरे सबसे गाता दरे एनर्जी कंजम्पशन पोगाता मने कि मो चीज जब मन गाता गा छक्से छक्से चीज इन गाते एनर्जी के लेने दो चाहे गाता ओती फियाइन गाता जन सोलचे फियाइन गाता ग्रंगमुई फियाइन एसी या चाहे गाते डोनमुई फिया हीटर यो छोटे से छोटे हर चीज जो आजकल रोजमर्रा आती जिंदगी नुकसान हुई दोनों गाँव में एनर्जी जो है तंगाते गोकरी खाते एनर्जी से बचे एरिज मोज देती का कि गाता अच्छा तना गेरी कमरे अनु गेरी बिजली और ऑफ फसे चाचा यारा जरूरत में तन एरिज यारी गा एनर्जी ची छीन पंखे की दो बन बसे चाचा हीटर छीनना का तो यारा दी जरूरत का तो मेना दो बन बसे चाचा दो ने हम वो गाता कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज बात जो दो गाता डुलन डुक और जैसे कि सोलर एनर्जी दो गाते इस्तेमाल बनाएंगे फिर भी हम खुआ गाता रिलीजियसली यूज बचा गाते माना गचुक ची बना का तो जितना हमें जरूरत है उतना हम यूज करें बाकी जो है हम सेव रखें जिससे हम सस्टेनेबल वही कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी ब्याज चलो यार छू ना कहते गार यारे छू ना कहते यार जरूरत यारे छू इस्तेमाल बचा बाकी यारे छू मामो फॉर्म ही पहुंचा दिया ना सिर्फ दिया सकमा आता महदूद मिलू छा ये ट्रांसपोर्टेशन है नुकसान से एनर्जी वेस्ट जैसे कि गतंग मिंदा चिच्ची की कम से कम 5 किलोमीटर खुरान सा डुल दो हालांकि खुए गाड़ी जगह नोक मिंदा 5 नफर को सीटी का खुरी छाया छा ना कहते एनर्जी चाहे पेट्रोल इन चाहे डीजल इन जो भी होगा कंजम्पशन पर ज्यादा भी नहीं देख यहाँ कार पुलिंग जरबान साइकिल जरबान हर चीज है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो दो चीज इस्तेमाल बचा जिससे हो सके कि गति इन्वायरमेंट बचे छे गति रिसोर्स बचे छे जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे साथ तरक्की होगा तो हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच नजर भी कोशिश
1: गुलाम साहब दादी नो यार मिशन लाइफ हा COP26 2021 से नो दी आइडिया प्रेजेंट बस
0: छा
1: इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन कंजर्वेशन निकल गचुआ असर जीता जो

0: 임팩트 보장 통원하다면 인터내셔널이
1: बिल्कुल युद्यू गता कॉप 26 सी देन यानो गता यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज ये सब का कौन एक्चुअल 2021 से एनालिस चीज जर माने चीज जर ना कतो गता गार इन ना कतो इंडस्ट्रियलाइजेशन मोन ज्यादा चीज में जुया इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन गति चम से गति शीते जितने भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहा है बेशक अल्टीमेटली वो सब एक गति इंडस्ट्री से एनाल दन चीज इंडस्ट्री से एनु दन जाना चम से गता कार्बन प्रोड्यूस और देफिया गता हर चीज लगाते मद्द नजर रखते हुए कौन से इसकी डिकार्बनाइजेशन जरे कार्बन पो थोड़ा सा कम बचा अधे जती चीज पो एक खुरियाना स्टार्ट हो जरे जुआ देखना कौन से दिया खुरियान मेन इसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा मी सगई हिस्सा गाते आंदिया लोग छुपो गति इन्वायरमेंट लगाते लज बचिन जरे जैसे कि गता गति लद्दाख है अनुआ गता दरे यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अनुरूल की गाँव साफ शख्चा या गति गाँव है चाहे इंडस्ट्रीज जो ना कहते इंडस्ट्रीज लेवल पोखरिया क्लीन एनर्जी जरचा इस्तेमाल बचा या दो नरी रिसोर्स पोत ना कहते गसुक चुना लिमिटेड रिसोर्स गति इस्तेमाल बचा कंजम्पशन पो गता गति हिसाब ची कलें चाहे एक्स्ट्रा लेन मिलें चाहे देफ या गति दरे यूटी लद्दाख है ना गता दिचिक 2026 जैसे कि गति यूल लजर ना कहते स्वच्छ गाँव सुरक्षित हवा और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वच्छ गांव का होना बहुत जरूरी है जरे दियू गति दरे लदा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जुआ दो मेन मांगती हर चीज जो है गति कॉप 26 यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज 2021 को पूरा अच्छी तरह से गति दरे लदा है इम्प्लीमेंट चेंज चेजर में प्लांटेशन ज्यादा बढ़ रहा है क्लीनेस ड्राइव ज्यादा चल रहा है दिया इनको लेके लास्ट ईयर 2025 जमीयत उल उलमा इस्ना शेरे सदर जनाब शेख नजरुल महती ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया जुआ क्योंकि मैं उस बहसियत रिप्रेजेंटेटिव अलीमा लाया ग्रीन मिशन और रिसर्च सेंटर क्योंकि हम भी उस कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था उसको लेके हमारे गति यूटी लेवल का चाहे एलजी बोला शेख साहब सब उन लोगों को इसको एंडोर्स करके आगे ले गया ताकि गति लेवल पे लोग हमने 1.27 लाख प्लांटेशन लगाया उनमें से पूरा गंगमस ताकि उसका सक्सेस रेट भी इतना क्योंकि लद्दाख लेवल पे 50% सक्सेस रेट होना भी बहुत चैलेंजिंग है मगर अल्लाह की फजल व करम से हमें उनमें अच्छे सक्सेस रेट मिला और सबसे पहले इस बात को नजर रखते हुए क्योंकि यहां पे कम्युनिटी मोबिलाइज होना इंडिविजुअल मोबिलाइजेशन जरचाओ दो निमान सख्त जरूरत होती और उस वक्त 2025 से जब से हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया उसके बाद जो है अभी गति रानो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन गता स्टार्ट सो कम्युनिटी गता मोबिलाइज सो हर जगह पे उसी टाइम जिस टाइम हमारे पास एक सीजन होता है प्लांटेशन का उस वक्त लोगों का डिमांड होता है कि हमें अलग अलग पौधे चाहिए हमें सैपलिंग्स चाहिए इस तरह की डिमांड जो है वो आना शुरू हो गया सर
2: साहब जो G20 तरबीस एंड रिलेशन प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल इनिशिएटिव गेमिन इंडिविजुअल बिहेवियर चेमिन स्वच्छ भारत अभियान जरे खोरेस यूरी तांग से खोरेस सफाई बा दी सिस्टम पो खों शुरू बास छन एरा गचु सर जो इंडिविजुअल लेवल के ने खेर इंटरनेशनल लेवल के लेप चूस चल ची इम्पैक्ट यू चुदी
1: जबरदस्त युद्ध एक नता दरे यारे हम पहले कब उसकी सिवा संकल्प अभियान जो है गति 17 सितंबर ऑनवर्ड्स डूलिंग जू 17 अक्टूबर संकल्प तो इसमें दिया मकसद प्रोग्राम पिन की मोदी जी का जो एक 25 ईयर्स अब जो सर्विस रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर हो या एज ए अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो देखिए आप उसने वही बोला कि जितना भी हमने सिवा किया है तो उस सिवा में सिर्फ यहां तक नहीं उसमें आपने उसने क्लीनेस्ट ड्राइव यानी स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर जो है 2014 से ही उसने स्टार्ट किया हाँ उस मिशन से अभी स्वच्छ भारत का हर जगह पे जैसे कि ओपन डिफिकेशन जरेगा तिर जितना मी गंगमा बाहर इंडिया गोवा अचानक तो बाहर अच्छा अभी ओपन डिफिकेशन जो है वो हमारे पास जीरो पे पहुंच गया जीरो पे 6000 बने क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ गता क्लीनेस तक जाडू तक महदूद नहीं था उसमें हर जगह पे जहां जहां पे पब्लिक आना जाना होता है वहां पे पब्लिक टॉयलेट बनाना होता है और आप हर जगह देख सकते हैं वो हमारे चाहे आरडी डिपार्टमेंट हो या बाकी सारे सपोर्टिंग बाय डिफरेंट एनजीओज जो है हर किसी ने सपोर्ट करके उसको इतना आगे तक ले गया अभी जो है इंडिया जो है ओपन डिफिकेशन जो है वो जीरो पे पहुंचा ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और उसके बाद आपने बताया कि G20 जो है हमारे 2023 में यहां पे इंडिया में ही होस्ट हुआ न्यू दिल्ली में जिसमें हमारे बहुत सारे

लीडर्स आए, G20+1 भी आ गया, तो उन्होंने एक सबका था कि हमें जितनी तरह से अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, सेम जो अभी हमने रिपीट किया जो COP26 वाला जो मिशन लाइफ वाला, उसको हमने आगे कैसे एंडोर्स करना है। उसको एंडोर्स करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, और उसके बाद जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्टिंग की जरूरत है, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की जरूरत है, जैसे कि बेन अवी तरह का सगल लखतुत्तों से गसुक बसीदियों के लखर चीन जरे, इनमें बहुत अच्छा काम ले गया। तो उसमें एक वर्ड्स आया था सर, ट्रेवल फॉर लाइफ जरे। ट्रेवल फॉर लाइफ जो है ये मोदी साहब ने भी वहां पे उसका एक विजन था कि हमें जहां जहां पे हमारा टूरिज्म जाएगा, उस टूरिज्म में जो एक इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो आपने बोला लाइफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए।

0: बॉडीज को हमने इस्तेमाल करना है। बहुत सारे एक सस्टेनेबल टूरिज्म, जो भी इवन की टूरिस्ट गाइड होगा वो उनको अवेयर करेगा, उस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो जो है टूरिस्ट वहां पे जाएगा, जिस जिस टूरिज्म को वो हमारे लद्दाख और करगिल के लिए रिलेवेंट है सर, वो वहां पे उस टाइम जो हमारे जो 20+1 पे हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में, उसी वक्त उसको भी हमने अडॉप्ट किया था सर।
1: और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा है
0: हाँ
1: इसको।
0: नेक्स्ट पूछा
1: असली
0: सर।
1: जो मिशन लाइफ मतलब मैं एक धरे दिन इस सोच सुझी देगा था इंटरनेशनल एक लेवल एक कैंपेन चल रहा है ना जिस यहाँ गत्सु का मदद बने जो दी कैंपेन बॉस मतलब प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव में ना गांधी गवर्नमेंट ने संदेश कर लास बच्चे जो छा ना गत्सु मदद से लेवल जो कि छू गए वाटर कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट मोबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो दूनी का गतु का इम्पैक्ट छिन जो दी मिशन लाइफ ही स्लोगन पर जो
0: बिल्कुल जो दरे डी एस आप पे का दरे ना दियर इज मोस्ट की सिर्फ कंपेन या अवेयरनेस अपनाता मेहदू रुस्पेंदू या सिर्फ दे कहाता जर्चिन अदोआ अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस मेजरमेंट प्लस फीडबैक, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है एनवायरमेंट मैनेज। सिर्फ अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर देता है, बाकी अवेयर हर किसी को हो जाता है, एकदम नॉलेज मिल जाता है, हाँ जी क्या न्यूज पे आ गया रेडियो पे, बट अल्टीमेटली वो चीज ग्राउंड पे देखना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें एक मेजरमेंट यानी गचुक बसे ये सब कुछ करना चाहिए, जैसे कि आपने बोला वाटर यूज, वाटर को आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक रखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हर डेली कितने परसेंट कितना पानी
1: यूज
0: यूज
1: करता
0: करता
1: है
0: है, जैसे कि उसका पीना होगा, उसका खाना, कपड़ा वपड़ा धोने, एक इंडिविजुअल पे
1: इवन गाड़ी
0: वो
1: धोने तक
0: गाड़ी धोने तक ये एक पूरा डाटा आ जाता है जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो सेम टूरिस्ट वाला का भी कितना हमारे पास गसुओं के इस्तेमाल से
1: इम्पैक्ट कैसे होता
0: इम्पैक्ट
1: है।
0: पड़ता है। सेम थिंग आपका वाटर के बाद एनर्जी पे आता है कि एक इंडिविजुअल कितना एनर्जी कंजम करता है, तो एक इस तरह की एक डाटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बाद एक हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंजम करता है, उनमें से वेस्ट कितना होता है। सेम इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी, एक इंडिविजुअल कितना कचरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द्यून गंगमा अधिस जति का अतिस ठीक ठाक तरीके का अतिस मैनेज बसे दो अतिस गेनवा खोसा
1: धरेंगे
0: गया जाए,
1: इम्पैक्ट
0: जैसे कि
1: चलेंगे
0: कस बिल्कुल एक डैशबोर्ड चाहिए जो है चाहे कि वो एक आपके इंस्टीट्यूशनल वे से एक स्कूल में एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि आज जो है कितने परसेंट आपका
1: यूज
0: बिजली
1: हुआ
0: यूज हुआ है,
1: पानी यूज
0: पानी हुआ,
1: हुआ
0: तो वो एक स्कूल में भी आप बोल सकते कि मेरे स्कूल में आज इतने लीटर हमने पानी जो है वो टंकी में डाला था, मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से मेरे यहाँ पे इतने पानी आ गया, तो वो आप कर सकते कि इंडिविजुअल पे डिवाइड कर सकता है। तो इसी तरह से आपका वेस्ट आपके पास इतना आ रहा है, तो 100 बच्चे पे डिवाइड करो तो एक गचुका भी गुजरे। ऐसा डेज में सिर्फ आपकी स्कूल्स में होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए, आपकी होटल्स में होना चाहिए, जहां जहां आपका है। तो इसीलिए सर एक हमारे लद्दाख में मिशन चल रहा है सर, मिशल खुरयुक सर, वो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने किया है, तो उसकी अभी मेरे रिगजिन जी उससे भी बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक 300 स्कूल लद्दाख में एमओयू साइन किया हुआ है सर। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किया है, और मिशन खुरयुक नाम का वो काम भी चला रहा है,
1: मशीन
0: जिससे जितने भी होगा आपका वेस्ट मटेरियल हो ये सबों को सिग्रीगेट कैसे करना है, जैसे कि प्लास्टिक को अलग से, शीशे को अलग से, कपड़े को अलग से, तो इस तरह से जो है अभी हमारे यहाँ पे काम होना शुरू हो गई सर।
1: जो साहब था मतलब दरे मतस पहला जो मिशन लाइफ है उसको ला गवर्नमेंट इनिशिएटिव का तो शुरू सोंग या इंटरनेशनल लेवल के अच्छी वैसे लेवल दरे चाहना दरे जो मिशन लाइफ ही यहाँ चीज सोच लद्दाख ना करगिल मद्देनजर खसूसन इन्वायरमेंट पे यहाँ पता फ्रेजाइल है हाँ छुई यहाँ ता माना रिसोर्स मान सुनते रह चो एल्टीट्यूड पर माना छो हाँ हाई हो बिल्कुल गत्सु का दियो चैलेंज ही गिन जो माता दी मिशन लाइफ पो इम्प्लीमेंट बचाओ चैलेंज ही इन हमें या नती मद्देनजर गत्सु का दियो फायदा माने जो और नती लोकल कम्युनिटीज ना विजिटर का सौदिया ना कंट्रीब्यूट बन चाहिए
0: बेशक सर, ये सबसे जरूरी क्योंकि हिमालयन रीजन एक टाइम पे वाटर बॉडीज के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे, मतलब अच्छी अजर बना नाती फेची हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स होने के साथ साथ

0: वो ग्लेशियर जो है हर साल अच्छा खासा हमारा रिचार्ज भी होता था। मतलब कम से कम हमारे जो मता इतिपोंगा हम बोलते थे 4 फुट 5 फुट वो आता था, वो हमारे लिए रिचार्ज होता था और ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हमारे पर नहीं पड़ा था। इवन कि क्लाइमेट चेंज बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का अब असर पड़ गया सर। लद्दाख का अभी जितना भी आपने देख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना बहुत शुरू हो गया है, और मेल्ट होने के बाद जो है जित छुमिक जरे दे
1: बिल्कुल
0: छुमिक नदी हर जगह पे आता है। छुमिक बंद छुमिक बंद से मल्ला पॉइंट के हर किसी के लिए को एक सोर्स नरगोज दे जो आता है
1: बिल्कुल
0: जहां से हमारे उसके लिए पानी आए। तो हमारे लिए सबसे पहला लद्दाख जो है इस वक्त सबसे चैलेंजिंग फेज पे इन्वायरमेंट को लेके दे फिया नते यरेस जस्दी का नतंग एक फ्रजाइल इन्वायरमेंट आई हो। हमारे पास हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, हमारा वाटर सिक्योरिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड
1: लिमिटेड
0: है। इसी की वजह से सिर्फ ये वाटर की ही वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है, हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल हर चीज पे जो है हमारे लद्दाख का
1: इसका
0: असर
1: असर
0: पड़
1: पड़
0: रहा है, वो सिर्फ छोटे से पानी की वजह से। उसका भी बहुत सारे असर देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हम जो है अभी सीधा जो एक लद्दाख जो एक ट्रांजिशन फेज पे आया है कि हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है। हमारा इकोनॉमी जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर या हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जो पुराना इरिगेशन कनाल्स है वो सब अब पूरा खत्म हो गया।
1: बिल्कुल
0: जहां जहां पे इरिगेशन कनाल्स होते थे आज वहां पे रोड बन रहा है,
1: पानी ही नहीं है
0: पानी ही नहीं रोड बन रहा है। तो रोड बनने के बाद जो है हमारे पास जो है जहां जहां हमारा ग्रीनरी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा वाटर साइकिल में भी बहुत
1: असर
0: सारे असर पड़ता
1: पड़ेगा
0: है। अगर आप लोग हम बोलते हैं ना साइंस और साइंटिफिक तरीके से, जहां से आपका ग्रीनरी ज्यादा होता है वहां पे आपका वाटर साइकिल भी अच्छा होता है
1: ज्यादा होता है
0: और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी अच्छा होता है। और आप हमारे एक आपका नहीं ये तो एक लेमेन और आम आदमी नती युल्ला दुखन सा कोई
1: प्रॉब्लम है
0: प्रो दियो हागे नहीं कि नता लो फलान चीज सोसिन छुका
1: शुक्र
0: नहीं आता ओ
1: बिल्कुल
0: चेयर बना नता नती लेवल पे का वाटर साइकिल पॉन कम सो ग्लोबल वार्मिंग पॉन हर जाना का तो नता छी दिया सर पूछे नहीं जुया
1: मसीह जो होना साहब चाह नता स्पेरा हम मोमो सो जो ये मिशी बारे में दमो से मोल जो खसपा बसे चाह ना आखरी के जो यार दिया मोल चाकिंग अति स्कूल्स जवान लोकल बॉडी सुन हाँ अति इंस्टीट्यूशंस आ जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं छाना कम्युनिटीज गंगमा लोक से गते जी मिशन लाइफ पे का गसो ता कंट्रीब्यूट बन चाहिए जो पहला दी जो छाना यंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गस लक्ष्य छचा इन जी मिशन लाइफ पर बस
0: कैसे बख्शी जो सबसे पहला यार की नती गचुक डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से नती अदे इंस्टीट्यूशन उन्हें इन्वॉल्वमेंट ना नता दे अनुखोंगी लक्ष्य जो मांगता मन जरूरी है क्योंकि नता सबसे पहले ने इंस्टीट्यूशन नता जरूरी सुनते जो सबसे पहला नता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निकला नता शुरू बने का तो सबसे पहला नता स्कूल से स्कूल जो है ना नता घर चीज ही नगर तो सबसे बुनियाद पाती स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दरे स्कूल सगानवा यहाँ पहला जैस की मिशन कुरियल जरे कांग्रेस एमओयू साइन कर सकते दिया चुक लांग अति दरे हर स्कूल यानो सबसे पहले फ्रूनला अवेयरनेस है जरूरी। दूसरा अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन कांग्रेस आदि चीज
1: प्रैक्टिकल
0: प्रैक्टिकल जिसे हम R3 भी कहते हैं। R3 मतलब वो रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल सेक्शन जो है अदो नजर में तो गचुक बस को दोबारा इस्तेमाल बचिन गचुक बस दो चोचिन या दो नेम्बो को यंग को ला से आनो गाते स्टेचिन जरे दे भी स्कूल आनो गाता इको क्लब यों मन जरूरी किचन गार्डन गाती ऑलमोस्ट हर जगह खत्म दो दो गाता स्कूल इंट्रोड्यूस चार को छो जो किचन गार्डन छोटा सा एक तो फून ला प्लांट से बारे में नॉलेज आ छे तीसरी बात जो है खुआ एक थोड़ा सा ग्रोथ हो दो इवन के रेस्टोरेंट होटल वाला जो है खुआ खुदी लेवल पे का कीचड़ गार्डन ची की उम्र हो दो ना सिग्रीगेट नती चम से वेस्ट मटेरियल ना का तो दोन अलग अलग से वो खामा ना सिग्रीगेट बचा होटल पर खुद सिग्रीगेट बचा दो ना हर चीज यानो दूसरी बात नता हा दिया नो मिशन लाइफ यानो यो चेंज हुआ थी हद से ज्यादा हमारे खाना भी वेस्ट हो रहा है वो भी एक मिशन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम 20 बंदे के लिए खाना बनाना है 20 बंदा कितना खाएगा उसकी जगह पे हमारा जो है कम से कम 50 बंदे का खाना हमारे से वेस्ट होता है क्योंकि अलग अलग बिल्कुल ये वाला भी एक बहुत बड़ा आता है। ये एक तरफ से फूड सिक्योरिटी का भी एक

0: हिस्सा है, वो अलग टॉपिक है, मगर मिशन लाइफ का वो भी एक हिस्सा है जो वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हर चीज़ होगा। प्लास्टिक जो है बच्चों को कम मिनिमल यूज़ करना है प्लास्टिक का, क्योंकि बच्चे जो है कभी कभार प्लास्टिक का बोतल भी लेके आता है, फेंक देता है हर जगह। तो दियन का मांगा तंगा स्कूल लेवल के इवन की यूथ भी गाँगा दिया इन्वॉल्व शार को शार जो है यूथ चेयर बना गाती यूथ ला इंटरप्रीनर जो है बिजनेस ग्रीन इंटरप्रीनर हो इन्वायरमेंट बराबर दो एग्रीकल्चर की तरफ से गाँगा दिन छा। तीसरी बार हमारे बिजनेस लेवल पे रेस्टोरेंट हो होटल्स हो हर जगह को इन्वायरमेंट दो। तीसरा हमारा लोकल पंचायत LHDC है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खुआ मिशन लेफ ने वो लखथुत्ता से गाता आगे हो चाहे सिर्फ मिशन लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगा, अपने गला बस से लाइवलीहुड का भी वो हिस्सा बन सकता है। जितना आप ग्रीनरी लगाएगा प्लांट ज्यादा आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसी लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल बनता है। दिया खुरान गता एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ गता
1: गुलाम साहब ता मना वता प्रोग्राम पे टाइम पर मम सोचो सेवा संकल्प अभियान है न्यूज गता नॉर्मल सर्विसेज कन बियॉन्ड ध्यान रचि चिक दरे मि मिशन लाइफ इनिशिएटिव पोम द जोसे सर जो सने एरेजेस के गता गामा लोग से
2: डॉक्टर साहब पॉइंट इस प्रोग्राम यूनिट पिन सेवा संकल्प स्पेशल प्रोग्राम सेवा संकल्प मीडियम का जो आकाशवाणी करगिल कसता प्रोग्राम इन मजद दुआया प्रोग्राम सदाकत दी प्रोग्राम पे सकबत नलंग इन मजद कुरान पागी तिलावर न तर्जुमा मुल्कान पुन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا

0: या संपलर प्रेशर सच गिन लक्षा दिया ले सो हम बसंत तो फिर गए फर्स्ट रीडिंग बो अगर नता माने ना डिस्कार्ड चुना तो मतलब फिर देमो इनले सेस थिंग ने नता यंग ब्लड प्रेशर वो रिपीट चुच इसले लंपो निस टोटल में लंपो सुन जो सुन गए ले पहला उखर हम बो फर्स्ट बो डिस्कार्ड चुच ले तेस थिंग ने सेकंड बना थर्ड ब्लड रीडिंग बो ब्लड प्रेशर रीडिंग में नीचे से बिल्कुल बिल्कुल सेकंड चोदा ने मैं यंग लगभग यंतु पुंगता यंग दो मिनट सा मा दिखता गेट कॉन्शियस करना अगर नियन ब्लड प्रेशर मापे को नाले नतोक ना जारे ना फितोक संकाले लपोक सुम
1: क्या खर्ची जाओ मतलब ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी यानी डॉक्टर बहुत मोटा चाचाओ लेनसिल मापोजाना मार मापोजाना ब्राज मापोजाना सुस्पा हेल्दी डाइट पुची हो गोशी
0: हेल्दी डाइट ना समय समय इम्पोर्टेंट नोले चिची तंगता ये छे कंजम्पशन बोले
1: कसर
0: आमतौर सोसाइटी ने चुख दुख पहले नमकीन चावल मोमे कंज्यूम चोर सो बस लास्ट टाइम लद्दाख से ना कुछ स्टडीज में तो ये देखा गया 10 ग्राम 12 ग्राम से ऊपर छा ले लेते हैं ले तो जम छा कंज्यूम चो ना बॉडी फैटिक मान ले छा एक तो ब्लड प्रेशर तो खतरा ही ना हो गया मगर छा पर हम कार्सिनोजन आगे तो एक कैंसर काजिंग एजेंट जान हो गए तो फिर छा मो एमिनेंट चल
1: सब एरेज मैंने चलता तो मोस्ट ब्लड प्रेशर ही दिया उनको लज मापो जैसे कि मिट्स जो छात्र कानून अति मीमा दफन तो शौक बहुत बहुत
0: शुक्रिया थैंक यू
2: दक्षा सपाइंटिस प्रोग्राम यूनिट पिनर देलुक्सी हागो मेडियम विका दिव आकाशवाणी करकेलेन कसता प्रोग्राम गिन मजत शर्बा नचुंग प्रोग्राम फुचुकन पॉइंट खतीजा बानू यंग प्रोग्रामी प्रोड्यूसर पॉइंट गुलजार हुसैन

इस आने वाले सेशन में गाते जरे तो दो इंजू कि जिंदगी जीने का सलीका गाता अफसा बहुत खेने मीन्स पो मीडियम पो टूल बोगरा गाते एजुकेशन है तो शेष शेष गाता दासन जरे एजुकेशन एजुकेशन का मतलब एजुकेशन सिर्फ गाता गा इन्फॉर्मेशन पो तत्सा तांचमिन एजुकेशन गा नरी सलाहियत पो गचुगा गति लेटेंट जरे गति हिडन गाता गा गाता तक्सपा मेथ खानी गति क्वालिटी गति लेटेंट गाता पोटेंशियल का तोचिन उदुन गाता एक्सप्लोर बा गाता मदद बचिन छना गति यूथ्स कुन कि गान गाति आइकन ऑफ दिन गति गा नेशन चे आइकन सिना खुना गुलती चिका तो सलाहियत कतो न कतो दे सलाह तुन एक्सप्लोर बचा और ओदे सलाह तुन एक्सप्लोर बचा दो इस्तेमाल बसे गतंग जिंदगी गा शोबे कतो न कतो गा शोबे तरकी कतो न कतो तालीमी तरकी कतो जन कतो मेडिकल फील्ड जन कतो हेल्थ कतो जन कतो गा फील्ड कतो जन कतो यरे क्या बोलते साइंटिफिक अवेयरनेस न कतो सोशल अवेयरनेस कतो जन कतो एनवायरमेंटल अवेयरनेस कतो जन कतो हर एक चीज के लिए आपको आगाही चाहिए हर एक चीज के तरकी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हर एक चीज के लिए हर एक फील्ड की क्या बोलते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए वेलबींग के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन को गाता तालीम के जरिए ही यो छिन उदे तालीम पो यो से मैंने गाता दुनिया ते गा फील्ड चिका तो न गा शोबे का तो न करो गाता गा तरकी छाछमिन इसीलिए तालीम मन जरूरी हर शोबे गाता तरकी भी मीना पो गाता गति शख्सियत पो गचुआ चोचिन जरखन पो कि गा गति शख्सियत गाता ट्रेड्स कति कैरेक्टर्स कति फीचर्स कति मन जरूरी मिसाल गाते जन का तो कॉन्फिडेंस देना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पो यारा देना एजुकेशन जरूरी क्यों छिन यारा दो छिन डिसिप्लिन जरखन चोचिन जिंदगी गाट गा जगे का गा टाइम पे का गा तरकी का गा चौगा गा लसपू बचिन ध्याना लचिन डिसिप्लिन यानी सही टाइम पे का सही टाइम चिका गा चीज बे खुरी तरकी क्यों छिन खुरी जगह क्यों छिन खुरी वक़्त क्यों छिन उदू लचिन डिसिप्लिन उदे डिसिप्लिन पोंगा नारा तालीम इस्ता छिन या तालीम छिन गाते कैरेक्टर बिल्डिंग जरे गाता छिन गाते कैरेक्टर पोंगा ते गचो बिल्ड बचिन जा गाता गचो इंप्रूव छिन गा नेरी थॉट प्रोसेस छिन गा नेरी सोच पु विचार पु गा नेरी सोच पु गचो जिसको हम बोलते थिंकिंग होरिजन जरला गचो गाता गा दुंगा ती ब्रॉडन बचिन वर्डन बचिन यंगति चि बचिन जनका तो दक्षिण आते स्नाजेस गाने रिची स्किल का तो नका तो ओदे स्किल पु खोज मतलब एक तो इंप्रूव बचे दूसरा यूथ पर बचे यार तक्सपा का तो मैं नका तो दो यार एक्सप्लोर बचिन एक्सप्लोर बस रिया में तालीम जरिए के यारा तो इंप्रूव बांगिन छिन दूसरा तो बचे मजा गाने रि फिजिकल वेलबींग पु मन जरूरी गाता सियाहत जिस्मानी सियाहत जरखान पु गति फिक्री सियाहत जरखान पु गति अकली सियाहत जरखान पु गति गति फिकिर पु कि अंगानारे मेंटल हेल्थ जरा था मेंटल हेल्थ के बारे अंगानांगर यानी कहने का मतलब मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ गति साइकोलॉजिकल हेल्थ गति मोरल गति मोरालिटी गति एथिक्स गति अखलाकियात गति फिकिर कुन दुगामा इंप्रूव बेमिना दुगामा गांग क्या बोलते इलेवेट बेमिना गाता तालीम पुमा नजरिन दु गंगमा कंबाइन बसे नंगानेरी पर्सनलिटी जना गानेरी शख्सियत पुचोचिन और इसीलिए गति मौलाली सांजरिन दुख दे गाता मतलब चिलो जो कसल मोलिन मौलाली सिस की मोमिन मी जक निस्पुदिन जकुना हसके सी जकु सुख मिशार होशिन यानी चीजरिन दे मतलब सिर्फ यही सिर्फ मियर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि यार दिन का तो फिजिक्स का तो ना का तो आपको फिजिक्स की तालीमत आपका बढ़ना चाहिए केमिस्ट्री बढ़ना चाहिए सोशल आपके क्या बोलते हैं सोशल साइंस के अवेयरनेस बढ़ना चाहिए दो मिनट पर यही फिजिकल वेलबींग यहाँ यही इंप्रूव छाचिन यही अखलाक पर इंप्रूव छर गोचिन या यही किरदार पर इंप्रूव छर गोचिन यही डिसिप्लिन पर इंप्रूव छाचिन अगर कहो खुदा ना खासा दो कदम ना कहो गुंदिया सी जाको ना दिरी जाको कहो चौक का तो लूज ना कहो खो खसरा है जरे उन सारी चीजों का हमें यही पता चलता कि खसरा मिदुक पे मीना गति फिजिकल वेलबींग मीना गति मेंटल वेलबींग मीना सोसाइटल वेलबींग मीना गा एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है और एजुकेशन ये टूल है गा नारी पर्सनलिटी इंप्रूव भी मीना दासंग आते जिसकी दी तालीम पे मन पॉइंट मोमो कहते हो ना पॉइंट चीजों से सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गा नारा जिम्मेदार शख्स शख्स ही चोचिन तो जिम्मेदार शख्स चुन मीना ओदे सेंस पोंग ओदे स्प्रिट पोंग आता एजुकेशन इस नाचिन यार जिम्मेदार शख्स का तो छा तो यारे जर्चिन इन्फॉर्मड डिसीजन लेंचिन और यदि जिम्मेदार दान में मीना गा नारा ओदे सोसाइटी ची रिसोर्स का त्योर ना कहो इन्हीं कंट्रोल इना को तो इन्हीं मतलब कमांड इना टीचर ड्राइवर खुद एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जज्बा ईमानदार एक ईमानदार ड्राइवर बनेगा एक ईमानदार इलेक्ट्रिशियन बनेगा एक ईमानदार प्लम्बर की भी जरूरत है एक ईमानदार एडुकेटर की भी जरूरत है एक ईमानदार हमें आलिम की भी जरूरत है एक ईमानदार हमें हटी पचिया जरूरत है बदकस्मती से ईमानदार शख्स पर मचाना कहो मत अकाउंटेबल जरखान पर मचाना कहो मत रिस्पॉन्सिबल शख्स मचाना कहो मत रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेन मांगन ममित इन्फॉर्म डिसीजन लेन मांगन ममित इसीलिए गति पूरा सोसाइटी का गति थी इम्पैक्ट पे हो गति सोसाइटी इंप्रूवमेंट नहीं मीना गति उदमी न्यांग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जरखान पू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरखान पू इन्फॉर्म डिसीजन जरखान पू या जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्स दी रिसोर्स गचो यूज बचिन एनवायरमेंट कच्ची इफेक्ट हो नई सोसाइटी कच्ची इफेक्ट हो उन सारी चीजों के लिए तालीम पुखा तो ना तेरे सही डिसीजन लें छीन और दिस दो डिसीजन पर सिर्फ यही फेवर है पूरे यही सोसाइटी नहीं नेशन नहीं दुनिया की फेवर है मगर मस अक्सर नरी स्टूडेंट नजर इन छिन जक बचा डिग्री होल्डर सुन या गति जमाना चाहे 20 साल पहले 30 साल पहले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में $10 अरब का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत

0: जी यारा बदलापुर एनु एक घंटा स्वच्छ ने आराम से तो ने इफेक्टिव जाचिन ओ दिन मता जो है कंपटीशन मता माहौल पदम मनाता जो है सिसनी होचिन शो पदा छिन हा संभा सो सो मी सो पना मता दिन गना ता जो इस्तीफा ले मंगाता काफी हद तक नियन चैन हा मता दे ने मती छो अच्छे का पसो पना मैंने एक लाइब्रेरी पूरे छो माइंड रिसोर्स छिन पता जरी गन मना छो समाज एक जरी गन तो मता तो दिन मता सबसे जिम्मेदारी छि की चीज बना मता गवर्नमेंट जिम्मेदारी को एक था गवर्नमेंट ने कहता जो है मती करी ले नु मना लाइब्रेरी एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी रहे तो अति गवर्नमेंट इस कोशिश हुआ कि लाइब्रेरी योत्खन लाइब्रेरी फैसिलिटीज बढ़ाई हो चुका क्योंकि अति फुसक लाइब्रेरी सचिन फैसिलिटीज बढ़ाई हुआ ओशन और क्योंकि मता थोन सोम चीज फ्रूचन क्योंकि फैसिलिटीज का मना सोम चीज फ्रूचन रशन खा तो मता जो है जरूरत इन फैसिलिटीज का और अति हर गाँव में जितना हो सके छोटा मोटा गाँव लेवल हिसाब की लेवल हिसाब का सुनते लाइब्रेरी का सुनते अलग बस 10-15 नफर छो भी कमरे जो है फैग हो सें गवर्नमेंट इस दो मना काफी जरूरी यहाँ पर अति मिसन शोबू जो है स्टूडेंट्स आने शोबू सक जो सिलना मतलब कबाड़ी है चौंस तंग या बाकी फांस तंग या बाकी दूसरे की नदी 50 रुपए की मोचिन कबाड़ी तंग से दो अति मैंने काफी गलत चीज क्योंकि शोबू अति एक अजीम जो है अजीम शख्सियत चीज कोई संभव पूरे दिन निचोड़ बस भी सोचें जाना दो मतलब कबाड़ी चीज चौंस तंग मना ये मैं दिसंबर मना सोच पुखे खुश दिन भी सोता हूँ दे मैंने कीमत मजक पाए हाँ कि सिर्फ दे शोशोक पर कीमत जगह ना दे शोशोक पर कीमत पर खुद चौंस तंग कबाड़ी पाला जाना दो अति सबसे गलत चीज जाना दे अजीम मीद लतपा को ले पूरे शोकबूज भी सोते कोई संभा दे होता मतलब दे कम अज कम इज्जत चीजक से मतलब जो है लाइब्रेरी हुआ था पब्लिक लाइब्रेरी हुआ तो उस दिन मतलब डोनेशन मचा डोनेशन माना मतलब डोनेशन माना मतलब तंगचा खुआ हिंदे शोकबू खेर सीखा ना डिक सिन तो यंते से लाइब्रेरी योग सीख जरूरतमंद फूसा इशू बन सीखा खुआ स्वर घोषणा खुआ तुमसी बारी दू मता आज दिन जरूरी ना आखिर यहाँ जो है शहर चे मोह जो है टॉक पुंग खत्म बैठ तो अल्लामा इकबाल इस दे मोल नुक दी लर्निंग पुंगता हा दी सब नुकचा पुंगता अहमियत दिन जरे उदी बारे नुक सब नुकचा पुग अच्छी सुन तो सुनते छोड़ना झपटना पलटना पलट कर झपटना झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना कि दक्षिणी बंदियक सर तो फुर इंदु के घर पर बैठ तो दू मता जो है घर पर बंदूचा पू रंग एक्टिव जगचा रंग मतलब पू मना तंदुरुस्त जगचे तरीके की उत्सुक हा तरक्की की उत्सुक पर की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना शायरी साई करना जो है नी टॉक पर अख्तिताम बैठ वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: डॉक्टर साहब पैंतीस लाइब्रेरी स्कूल ऑफ एसवास पेरिंग पिन मीडियम का जो आकाशवाणी करगिल
2: QR कोड स्कैन करो 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह दिन बन गया
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए
3: फर्जी ऑफर से होशियार
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: मीडियम का जो आकाशवाणी करगिल कसत है प्रोग्राम फुचुगेत यर्गेसी प्रोग्राम में दस फुचुगेत कसत है मजात
6: अस्सलामु अलैकुम आकाशवाणी करगिल केना यम फेसबुक प्रोग्राम चिखुरे ग सैयद काजिम हुसैनी यंता नयान सरचि खतुक छेनियोत ने जुना सलाम पुफरत मुचन सोशी यले प्रोग्राम यनखनी अछेनु मुक क फोनन यंता मुजिनु तंग अचस आकाशवाणी करगिल केना फ्रमाचिक प्रोग्राम ने सिकिम निस्कोरला यंता सुपा हागोरे ग्लिप चुपी फ्रलुक्स बात देनान चोसला दिनियां लेगिना खाचन प्रोग्राम ची खुरे यंताने खतुक छनियोत और द्यामा बे दी प्रोग्राम पाओ यंती फिला फन किचन प्रोग्राम ची छो कसने दिनेंसी दी प्रोग्राम प्यां सब बसनल लांगस PM 15 फॉर दी वेलफेयर ऑफ मेनोटीसी स्कोरला स्पेरारिक दे जुगना इंता सुपा ओबी बेसिट इंटरव्यू गां फ्रचुगेत नि प्रोग्राम यन खानून नता सवा पता वतां गने रंग फायुल हिंदुस्तान चोस आजाद युद्पी मुलुक चिक फायुल चिगानु गने रेस मिसेस प्रालिन्योता निंगने रंगा गने री फायुल हिंदुस्तान यानुक जर बा यंगने री फीलिंग सुन एक्सप्रेस बा आजादी होतां देनाने चोस लाइन इंबो इंबो गने रंग गने री फायुल हिंदुस्तान यानुक अकलियत उन्लांग फ्रमाचिक जोस्ते का खुई रॉक्स बे यंखुंग यारगे छजुक पे फ्रलुक्स बे फ्रलुक्स बा छातां हुकूमती छोसना छाने देनाने चोसला गने री हुकूमती फ्रलुक शिकदों इंसु कि गनेरी 15 फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज जरखानी दी स्कीम पु गावेनु नौका चौगी स्कीम चिचोसे होते इंसु गाव लोकसो लोकसो हुकूमती लोकसो लोकसो महकमे

0: Focus katutan ang ane rang beros ko ar lusheminang ningan e rang ane skill putsong sang ane spending kung may ngin chay nang ngan e rang rospo deo tang king ane sambat ang cha jitna ho sa ke hukumat is dino ka chogi skim pung ane refile chose o tin di skim unik na ngan e res fan kelen mi fralux bacha yang yimbo yimbo ngan e res jitna ho sa ke ngan e ri lakshi sunika antang se lakshi sabi ngan e res fralux bacha ताकि अगर नेरी मिसेओ रिगेल बा मिसेक छोक कसनी गस निस प्रावलेगे ने किमिच चादुक गस नरीस प्रावदेगे जक्से मैम जेबुन सुपरवाइजर आईसीडीएस करगिली का नेंताओं सुपा गता आईसीडीएस सीन नाल जोंस गस सब स्कीम कतुए उमत या गता आईसीडीएस पुखरान चीन जर्चस्पो दुना अदे नाल जोंस जुतखने सब स्कीम उन्हें अनुगता गस स्कीम कतुए उमत जर्चस्पी स्कोर लेंता सुपा फेसबुक रिसीव फ्रुचुगे त्रिसोला स्नाबाजत
1: शुवानी करगिल सपेक दिरिंग आईसीडीएस ऑफिस करगिल लेप्सो दिखांगा चेंबस पुरा ताउ मिंगना मैम जेबुन निसा सुपरवाइजर आईसीडीएस करगिल गा चेंबस जुक्सो छनातस मैम मिकना इंता सुप्पा गाता आईसीडीएस नाजों फार्मेसी गथनी स्कीम निस कोला हगोरी लेप्चुक फ्रलुस बेत सबस नला अस्सलाम वालेकुम मैम
2: वालेकुम सलाम
1: आकाशवाणी करगिल टीम शोस नेरा ओजु स्ट्रीम मजे जु येरे सिरिरिन चंतु संतु तां से रांति किस को ते येरे सिरिरिन जिन खसपोन सेल्फ मी ने रांति किस को जु रे खचिक नते प्रोग्राम बा संग एना जु गवांग नते आईसीडीएस स्कूल लगाता में मास कोला हागो तां से एना जु आईसीडीएस स्कूल लेर काफी मोल स्पिनंग छना यंग फेरचिंग नते दी प्रोग्राम स्टडी का लगाता में मास कोला आईसीडीएस पु चीन जर्चस पु ngon chup ming na ngata yang sirshigera jawabet paju yeres ngata ICDS skola di ICDS pukuran chin du nga tifla gazwa fan ka chan chin yang ngata nga chowa din ngana fan kelen mor gushain din yang ngata nga chok kasum skin ka tu ma jashas pu yeres ngata mi mas kon ngon chu shir ka sa bakhshis
2: bakhshis sir eram di kas kyo te ma chitena ICDS skola mi mas sun suk pa tisofo chik pi fila तो सबसे पहला ना गंता आईसीडीएस पुचीन जरे गंती मीमांग सुन लदी बारे और तख्स पर काम रेदुक और गंती पब्लिक इस दी का गंता इंटरेस्ट पु काम रीता मात सोरें दुगिया गंती आईसीडीएस स्कीम सारे इसको लखों खाशिक पत्ते मछा इन सूदी फिल गंतिस यंती स्टोली का खों आदि का हागो तामी कोशिश बेत सबसे पहला आईसीडीएस जरबाना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम इन सू आईसीडीएस मतलब पु चाइल्ड डेवलपमेंट जरबाना दी स्कीम पु में लिंगंती थ्रून सारे एरिया से फिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टो से इन सू और दू सबसे पुराना स्कीम चांग इन सू गाँव 1975 का ना दिल तक डू लेने होती है दिस स्कीम पो दिस स्कीम पो स्ट्रे मकसद पुखरां और दिस नदिया इन मिनसुक किंग अंतिम फ्रून यंग हिंदुस्तानी फ्रून और दे टाइम पिका अंतांग फ्रून ला जानी कमी छाना को यंग माल न्यूट्रिशन सो मिनसुक माल न्यूट्रिशन ने बीमारी छाना माल न्यूट्रिशन जबाना इम्बेलेंस न्यूट्रिशन छाखों निजाखा निजान पु बराबर फुनेंग माछा नखों माल न्यूट्रिशन चोक्स बीमारी छाना दया यंबो यंबो स्टंटिंग जबना रगो छुनसे लुसिया एनीमिया अक्षरी कमी दु चोक्स नंतांग इशू का तो प्रॉब्लम का तो नंती फुनेंग खोपंगिरम अमान यंग थों मना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली दिस स्कीम पुचे मकसद पुखरा दुन सखतम बेफिला चोस पिनसुगा 1975 कनादिल तक दखसन दी स्कीम पुलायंग दोबारा अर्देमो बसेमी सुपा दी स्कीम पुलेप चिक पिफिला दियां यंग जान चिक मल जो शिक्षण चुक पिफिला दी स्कीम में मिंग पु दखसन यंग चेंज सोंसे दखसा दूला सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जेरे गंता छोर बचा दिया दी स्कीम पु गंता यंग अर्देमो बसेमी सुपा लेप चुक पिफिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां यारगेस का तो क्यों स्पिनसुक गे तहत गंतेस दी स्कीम पु ज्यादा से ज्यादा म्यून सुपा दी फनखिन लेप चुक पिफिला जान आंदोलन जरे अभियान का तो गन या पोषण अभियान जरे उत्सुक अभियान का तो स्टार्ट बस यो गे तहत ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गंती म्यून ज्यादा से ज्यादा पता छा छुपी फिला दी स्कीम स्कोरला गंतेस प्रोग्राम अमल लख्योमा जैसे कि गचस पोषण पकवाड़ा जरे गंती मार्च अप्रैल टाइम पे 15 दिनी प्रोग्राम चिमल लख्योमा म्यून ला गंती पोषण स्कोरला जन स्कोरला सेहत स्कोरला हगो तंग में फिला या दी स्कीम पो गंतेस ज्यादा से ज्यादा म्यून सुपा दी स्कीम फनकेन ले छुपी फिया दिया चोखला पोषण माह जरे गचस सितंबर महीने एक महीना पूरा and awareness program centers ai ka yul yul la panchayat level ka so se man lakho mata ki di sikki me fan khel nganti zyada se zyada nganti public supa khor taks pa so se duni kana khos fan khel me koshish be other time pa acha jang nganti jan school la nganti health

nutrition pu zan pungachil ka chokshi basata mazer bana nata weekly menu chasi odia ki ga japanga zan puskole ta chas injere odu proper menu har anganwadi center ka provide basio nanti anganwadi helper is de menu hisabika jakhang khonga zan pu odi thebzar puskole nanti pregnant aman lactating aman duna 6 mahine kana 6 sal pa fundla du ta chazin daksan nanti saksham anganwadi and portion 2.0 ngatanga di ka di service pika zyada focus basio di ngata ya concept chon se jese ki ECC is early childhood care and education ngante se free tapiar pun nyambo yambo khu education pikang focus ta cha ya portion bi padai bi zerin chi ngachi worker saga gacha training anta sin ya ki portion pun nyambo yambo nganti di nutrition ya zan pun nyambo yambo ngante funa padai ga chosla ta cha zin zare ngachas har anganwadi worker la di training anta sin odi training pang ya preschool pang antes mainly free antes holistic development ka focus ba 3 saal ke na 6 saal pe free holistic development be koshish ba cha holistic development zar bana khui all round development cha ju free chahe kho physical iso khui go antes thik lu shu cha exercise through zan through ya khui dimag pang antes yar ge jo chu cha dimag pu antes la sokhla yar ge jo chu cha kho matches nganti sahar center ka then provide basio preschool kids jere saman nganta puzzle na khonga tlm teaching learning material sahar center ka provide basio ya sheet jere block jere colors jere odun sa ga through nganti anganwadi worker is phone la odu chos activity ka to bache jin ge jere ka khui physical development acha cha jin khui mental development acha cha jin dimag pon khui kole ka yargya jo cha jin kyunki nganta sa जितना हो सके दी टाइम पर खुद दिमाग में यारियस क्यों में कोशिश बना गाँव 6 साल अपना उतना रेट उतना तेजी का खुद दिमाग में यारियस ऊंचा मीन सुख दी फिलहाल अंतिस दी टाइम पर फ्री दिमाग पे यारियस क्यों में ज्यादा कोशिश बचा गाँव मंत्री आंगनवाड़ी वर्कर इस प्री स्कूल एजुकेशन थ्रू थ्रू ने क्यों चाहिए या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट जब ना फिजिकल आयो हुई मंत्री सेहत दिमाग पे अम्बो अम्बो सेहत पहुंचे कोशिश बचा क्योंकि मंत्री दो जब दे तंदुरुस्त बॉडी चाहिए तंदुरुस्त दिमाग चोचिन जरे खा मंत्री यहाँ बंग वंग तांचु से फिजिकल एक्टिविटी बना खुई रुगो ठीक लुशाजिन या बाकी एट्स पजल ना शेप ना उदुन सा पहचान छने खुई दिमाग पों यरगे जों छजिन सुदिया टाइम पी कना सुनचे नहीं खुई दिमाग पु डेवलप छेन छना आगे खुई लाइफ पे प्रॉब्लम यों छमिन माया जब को स्कूल लछाना खा इजीली कांसेप्ट सख छुचेजिन खा इजीली कांसेप्ट सख पिकअप बा यन छजिन क्योंकि खुई दी टाइम पे दिमाग पो 80% डेवलपमेंट यरगेस यों सियोत बना या दु यंबो ऑल राउंड डेवलपमेंट जमेने दे गंती सोशल डेवलपमेंट आयो चिन सामाजिक डेवलपमेंट गंग खास सेंटर का जब खो यो मना फ्रून सक यम बो खो गुल मिल छाना खास पेरा जर बायो चाज इन खो फ्रून ला नोरो गोनी पता छा जाज इन सुसी इज्जत बा टीम वर्क उदुन सक क्वालिटी सा फ्रूला लोफशा जिन जैसे कि गंतिस फ्रून इस डिफरेंट बोजिया गा फ्री खंगमा खोरा छ अकेला जकना खेंगा सोस क्वालिटी का तो चाजिन खो मतलब खोरंग एक्सप्रेस बांगियन चाहे मिंदे को इमोशन सा खो क्रूचियां चुप जाते ना दुख चाहे जब खो अंतिस कामा जाख से जाख से जाख शिक स्कूल लता मना खो फ्रून यंबो बियंग मा गोश चाहे ता अंतिस फ्री खो सुनते ना

0: दख्त सप्पा अंतिस पुर्गी खबरों लंग हिन न्यूतपिन मीडियम वेव का जो आकाशवाणी करगिल इन
1: लेमा नदी तो पॉलिसी जिसको नजर आ गानुक प्रीमियम मिनसे बोनस और ग्याला तो तुक यंग रंगमा चंचो पीएलआई यत खनला सरकारी लस्कुम पन यंबो यंबो प्रोफेशनल सर्विस दोना ग्रेजुएट दोना डिप्लोमा होल्डर लालेन मंगेन चाइन पीएलआई पॉलिसी फन के यंग पोस्टल डिपार्टमेंट नि भरोसा रंगी निमोर ले खन पोस्ट ऑफिस ना दिरिंग खोरा थुत पजत यमेन ना

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

0: को बताया कि म्युनिसिपल कमेटी बड़गाम के 13 वार्ड के लिए अमृत के दूसरे मरहले के तहत मंजूर किए गए वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। एमएलए शौकत हुसैन गनाई की तवज्जो दिला तहरीक का जवाब देते हुए ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने ऐवान को बताया कि जैनपुरा और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के बागात में मेवों के अचानक गिरने का सरकार ने संजीदा नोट्स लिया है और इस मामले का जायजा लेने के लिए मुश्तरक कमेटी तश्कील दी गई है। एमएलए बिक्रम रंधावा की तवज्जो दिलाओ तहरीक का जवाब देते हुए वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि गांधीनगर में अस्पताल की नई इमारत तामीर करने का मंसूबा सरकार के जेर गौर है। असेंबली इजलास के आखिरी दिन आज कई मेम्बरान ने वक्फे सफर के दौरान अवामी अहमियत के मामलात उभारे। मेम्बरान असेंबली अली मोहम्मद सागर, प्यारे लाल, शौकत हुसैन गनाई, रियाज अहमद बेदार, अली मोहम्मद डार, मुजफ्फर इकबाल खान, कुलदीप राज दुबे, मुश्ताक गुरु, रणबीर सिंह, आगा सैयद मुंतजिर, जफर अली खटाना, सतीश शर्मा, जावेद इकबाल चौधरी, मीर फैयाज चौधरी, मोहम्मद अकरम, तनवीर सादिक, शमीम फिरदौस, सुरेंद्र कुमार भगत, जावेद मरचाल, इरशाद रसूल कार, विजय शर्मा, कैसर जमशेद लोन, अब्दुल मजीद लारमी, ठाकुर दर्शन कुमार, शबीर अहमद कुल्ले, मियां महर अली, फेरोज अहमद शाह, इफ्तिकार अहमद, भारत भूषण, जावेद इकबाल चौधरी, मेराज मलिक, वहीद रहमान परा, नजीर अहमद खान गुरेजी, एम वाई तारीगामी, इरफान हफीज लोन, मीर सैफुल्ला खुर्शीद, अहमद शेख और सलमान सागर ने मुख्तलिफ नोयत के अवामी मसाइल उजागर करके इनके हाल में जरूरी कार्रवाई का मुतालबा किया। आज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने आइन के तहत हासिल इख्तियार की रूह से असम्बली को गैर मुआइना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय फौज महज बीरूनी खतरात से मुल्क का दिफा करने वाली एक फोर्स नहीं है बल्कि वो जम्मू कश्मीर में आम शहरियों के लिए मदद और हमदर्दी का एक जरिया भी है। आज श्रीनगर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत फौज की तरफ से मुनाकिदा गेर में मेगा आयसर सर्जिकल कैंप की इख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने श्रीनगर और टंगडार में मुसलह अफवाज की मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टरों की तरफ से 364 मरीजों की बीनाई बहाल करने के लिए आवाम के तई उनकी खदमात को सराहा।
1: आज ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि यही साहस है, यही कर्तव्य निष्ठा है और यही सेवा का भी सच्चा अर्थ है। मुझे बताया गया था कि तंगधार का कैंप ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत आयोजित होने वाला 10वां मेगा आई सर्जिकल कैंप था और बॉर्डर पर अपनी तरह का ये एक अनोखा कैंप था जिसमें मॉडर्न फेको इमल्सिफिकेशन, विट्रियो रेटिनल और ग्लूकोमा सर्जरी से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट और टूल्स है वहां तक एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया था। ऑपरेशन दृष्टि ने पूरे राष्ट्र के सामने एक अन्य उदाहरण भी रखा है कि भारतीय सेना केवल बाहरी खतरों से देश की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं है बल्कि वो आवश्यकता के समय देश और जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के लिए सहारा, संवेदना और उपचार का भी प्रबल माध्यम है।
0: इतलात के मुताबिक मुल्क भर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई है और 3,500 से ज्यादा जरायां की जा चुकी हैं। हुकाम ने इस इकदाम को अवामी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने वाली एक कोशिश करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर आजम के जनसेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजह हो जाती है। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाप्त करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मुतालिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
2: सेहत के शोबे में माली तहफ्फुज फराहम करने के मकसद से शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुल्क की बड़ी सेहत तहफ्फुज स्कीमों में शामिल है। ये स्कीम सितंबर 2018 में शुरू की गई और इसके तहत अहल खानदानों को सानवी और तीसरे दर्जे के अस्पताल में दाखिले के लिए सालाना 5 लाख रूपये तक का सेहत कवर फराहम किया जाता है। ताजा सरकारी आदादशुमार के मुताबिक 12 अगस्त 2026 तक 45 करोड़ 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं जबकि 30 जून 2026 तक 12 करोड़ 69 लाख अस्पतालों के दाखिलों को मंजूरी दी गई जिनकी मालियत 1,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। स्कीम के तहत 38,466 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पताल इस फेहरिस्त में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए मुस्तहिक अफराद को कैशलेस और मियारी इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है जिससे इलाज के अखराजात का माली बोझ कम करने में मदद मिल रही है। अक्टूबर 2024 में इस स्कीम को मजीद वसत देते हुए 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों को आमदनी या समाजी हैसियत से कतई नजर सेहत कवर में शामिल किया गया। यूं आयुष्मान भारत का मकसद इलाज के अखराजात के बोझ को कम करते हुए काबिली रसाई, मियारी और कैशलेस सेहत खिदमात को आम लोगों तक पहुंचाना है। एन ए इशरत के साथ मैं सईद मुबशिर रुफाई, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल।

उन्होंने ने कहा है कि शिकायत के इजाले के निजाम की कामयाबी का अंदाजा मियारी और मौसर हल के अलावा शिकायत करने वाले के इत्मीनान की बुनियाद पर लगाया जा सकता है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज एक मीटिंग के दौरान किया जो यूटी में शिकायत के इजाले के निजाम का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी। मीटिंग के दौरान इस सेक्टर में मौजूद खामियों की निशानदेही करने के अलावा इस निजाम को मजीद मौसर और अवाम दोस्त बनाने पर गौरखोज किया गया। मीटिंग के दौरान बताया गया कि समाधान पोर्टल पर अब तक 1,36,000 से ज्यादा

0: भी जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि तिबी निगहदाश की मुनासिब सहूलियात महज शहरों तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए। बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सैयद याकूब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्थान आलिया वाका सोनवार श्रीनगर में नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज नमाज जोहर से कबल उलमा और खतीब हजरत ने अवलिया किराम की सीरत बयान की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को उर्स की मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज अलग अलग कार्रवाईयों के दौरान 10 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात की बड़ी मकदार बरामद कर ली है। जब्त करदा नशीले अशिया में चार हीरोइन, ब्राउन शुगर और कूटी हुई बंग शामिल है। इस दौरान अवंतीपोरा पुलिस ने चंद्रीगाम और अवंतीपोरा में म्यूनिसिपल हुकाम के हमरा खुद रव बंग की एक बड़ी मकदार को तबाह कर दिया है, जबकि हंदवाड़ा पुलिस ने इलाके के कई स्कूलों में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के प्रोग्राम मुनाकिद किए। शोपियां पुलिस ने जिला पुलिस लाइंस में पुलिस जवानों के लिए एक तिबी कैंप का इनाकाद किया, जिस दौरान मुतलका एहलकारों का तिबी मुआयना किया गया। उधर सोपोर पुलिस ने मैदानियात की गैरकानूनी कानकनी और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल की जा रही 6 गाड़ियों को जब्त किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी ने एक पेशरफ्त के तहत अपने कैरियर का पहला बैन अल-अक़वामी मैच खेला है। उन्होंने वेस्टइंडीज और भारत के दरमियान जारी 3 यकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत की तरफ से अपना डेब्यू किया। वो परवेज रसूल और उमरान मलिक के बाद भारत की नुमाइंदगी करने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इधर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कल से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर ईरानी कप क्रिकेट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और अब मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:25 और गुरुबे आफ्ताब शाम 6:15 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप समाप्त करें आज कानून साजिया में, हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब खैर।
1: आदाब, पेश है जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हुई आज की कार्रवाई का खुलासा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आखिरी यानी आज के दिन का इजलास बाकी तमाम दिनों के मुकाबले में काफी पुरसकून रहा, जिसकी बदौलत वक्फे सिफर के दौरान ऐवान में नुमाइंदगान को यूटी के साथ साथ अपने अपने हलकों के मसाइल उभारने का मौका मिला। चिनाब वैली के वार्ड 1 इलाके के मोंगली गांव में लगी खौफनाक आग पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बारे में मुतलका एमएलए ने कहा कि इलाके में आग बुझाने वाले मरकज के न होने से आग पर काबू तब तक नहीं पाया जा सका जब तक कि पूरी बस्ती खाकिस्तर न हुई, इसलिए मुतासर खानदानों की बाजाबादकारी सर्दियों के मौसम के पेश नजर वक्त की अहम जरूरत है। इजलास के तकरीबन तमाम मेम्बरान ने अपने अपने हलकों

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे।
5: शब के 8:02 हो चुके हैं। पेशकदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शेर, लेकर आया हूं आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम फौजी भाई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम के आगाज में हम दिल दे चुके सनम से ये प्यारा सा नगमा।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए आकाशवाणी करगिल से। तो चलिए दोस्तों, अगला गाना सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चलिए दोस्तों, अगला गाना सुनते हैं अभिजीत की आवाज में, फिल्म है यस बॉस।

0: सामीन, अभी तक आप सुन रहे थे अभिजीत को, फिल्म थे यस बॉस। तो दोस्तों, अगला गाना सुनने से पहले हम फिर से लेते हैं एक आरबीआई की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो दोस्तों, और आप चलिए बातें करते

हैं एक ऐसे गीत की तरफ जिसमें मोहब्बत भी है, जज्बात भी है और दिल की गहराइयों से निकली हुई एक खूबसूरत सी बात भी। तो दोस्तों सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में मोहब्बतें लुटाऊंगा, और आप सुनते रहिए फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल से।

अभी तक आप सुन रहे थे अभिजीत को। तो चलिए दोस्तों, अगला गाना सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, फिल्म है साजन।

सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए आकाशवाणी करगिल से। दोस्तों, अभी तक आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत खूबसूरत सा नगमा। तो चलिए दोस्तों,

0: गाना सुनने से पहले हम फिर से लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ!
2: फर्जी ऑफर से होशियार,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों अगला नगमा है जो शायद आपको किसी की शख्स की याद दिला दे, तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे अभिजीत को, फिल्म थे चलते चलते। तो चलिए दोस्तों, अगला गाना सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म है मुझसे शादी करोगे।

0: सामिन, अभी तक आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। तो चलिए दोस्तों, अगला गाने सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फौजी भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, सामीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए आकाशवाणी करगिल से। तो चलिए दोस्तों, अगला गाना सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, बादशाह फिल्म से।

0: د خصوصا په انټس پروګرام کې نه پین یو سترونګ محمل فلم ریډیو یو کډیو اکاشوانی کرګلین کسا ته اکاشوانی دلی کنه
1: بس زرا سا انتظار.
2: نمسکار اکاشوانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں مکیش کمار. केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति. दिल्ली के लिए अत्याधुनिक

0: यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते, 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा

0: सभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।

0: स्थिरता, व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया

0: रामदास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees.

0: the vision of Viksit Bharat by 2047. With Dipendra Kumar, Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
1: The government has advised Indian nationals against voluntarily giving up their Indian citizenship to join the Russian armed forces. In a statement, the Ministry of External Affairs advised Indian nationals travelling to Russia to exercise caution when pursuing job opportunities there. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Gangas and Kapil Pokharia finishing on the podium today. Later in the day, wrestler Sunil Kumar won bronze in the men's 87-kilogram Greco-Roman event, beating the Philippines' Callum Johnston-Roberts 9-0. In women's hockey, India defeated South Korea 2-0 this evening to reach the final. Ishika Chaudhary and captain Salima Tete scored for India. In squash, Indian men's and women's teams advanced to the semi-finals, assuring 2 more medals. The top-seeded and defending champion men's team beat Kuwait 2-0. In men's cricket, chasing a target of 406 runs set by West Indies, India were 307-1 in 30.2 overs in the second ODI of the 3-match series in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves hike in MSP for all rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupee procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5,548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गयी। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमू तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपए फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।

0: बेलगाम जिले के खान साहिब पुलिस स्टेशन के तहत वाके गुरवत कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा के हलाकत के साथ ही लश्कर ए तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे एनएसडी ने अंग्रेजी जबान में आरजी बुनियाद पर न्यूज एडिटर्स और न्यूज रीडर्स की खिदमात हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए www.newsonair.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा, क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात एटीएस, भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नसा सपा इंदेस आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दुना उर्दी खबरों के निपिन मेडिवयुका दिव आकाशवाणी करके लेन वक्सपोत सानी इर्गुना मिनर सुमचु सुमसुक का सता पुर्गी ड्रामे गेनमजत कुनमी जलता

ngachi yulpa phukata na nyambo hati chizgola na dukse pinachi galamika bemallana karpo gadi chika shiu shiu shiu shiu shiu shiu zenchik kyons manas nozot pintanga shoru gachi bok deyana nasamu shor nama shor deka dubet samsena dukspinya दे मला शिव शिव जर खाने दे पुलिस की गाड़ी इन मिनसुक निशान पलपसना चाप्स की जा चाप्स की स्पा माची एफ्रुनिस बोधी ची सों सम ना नर तास्पत कोंगा जुन में ओं सिंजर है दे मला ना पुलिस की ओदे गाड़ियां नुना खड़ाक पड़ाक बेंचे पुलिस सुम चाप बाप्स बाप्स सेंगी गौर साला चोक थाम्स Thamsana zvut phule gari ngakas. Ngakale khoes gari hong benchik kes. Kes padayanu polisunis ngal tasaduks, ngas polisun lal tasaduks ya. Degana chik-chikis lakpayanu chakthur chikura tsuk. Dungi lakpala dhula taks. Taksana yang garis kes. खेरे बांचिक डुल बना ता थानेस गोला लेप सिन मिन्सुया थानेस गोला गाड़ी चाप लेप से गाड़ी गो फेस फेस पा पुलिस सुसुआ मुबारक आला मुबारक दोला मुबारक तांग तांग मानर गला सुंग जेंचिक सुसुआ मुबारक तांस तांसे बांचिक बस ना देना पुलिस चिक चीज ना चाकथुर पुल थामसना खेजया